0: और उस पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ रख दिए और तुम लोगों को मीठा पानी पिलाया। उस दिन झुठलाने वालों की खराबी है। जिस चीज को तुम झुठलाया करते थे अब उसकी तरफ चलो। यानी उस साये की तरफ चलो जिसकी तीन शाखें हैं।
1: ला ظليل ولا يغني من اللهب
0: न ठंडी छांव और न लिपट से बचाओ।
1: انها ترمي بشرر كالقصر
0: उससे आग की इतनी बड़ी बड़ी चिंगारियां उड़ती हैं जैसे महल।
1: كأنه جمالة صفر
0: गोया जर्द रंग के ऊंट हैं।
1: ويل يومئذ للمكذبين
0: उस दिन झुठलाने वालों की खराबी है।
1: هذا يوم لا ينطقون
0: ये वो दिन है कि लोग लब तक ना हिला सकेंगे।
1: ولا يؤذن لهم فيعتذرون
0: और ना उनको इजाजत दी जाएगी कि उज्र कर सकें।
1: ويل يومئذ للمكذبين
0: उस दिन झुठलाने वालों की खराबी है।
1: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين
0: यही फैसले का दिन है जिसमें हमने तुमको और पहले लोगों को जमा किया है।
1: فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ
0: अगर तुमको कोई दांव आता हो तो मुझसे कर चलो।
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
0: उस दिन झुठलाने वालों की खराबी है।
1: إن المتقين في ظلال وعيون
0: बेशक परहेजगार सायों और चश्मों में होंगे।
1: وفواكه مما يشتهون
0: और मेवों में जो उनको मरगूब हों।
1: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون
0: जो अमल तुम करते रहे थे उनके बदले में मजे से खाओ और पियो।
1: इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन
0: हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं।
1: वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन
0: उस दिन झुठलाने वालों की खराबी है।
1: कुलू वतमत्तउ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून
0: ऐ झुठलाने वालों तुम किसी कदर खा लो और फायदे उठा लो तो तुम बेशक गुनाहगार हो। उस दिन झुठलाने वालों की खराबी है। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के आगे झुको तो झुकते नहीं। उस दिन झुठलाने वालों की खराबी है। अब इसके बाद ये कौन सी बात पर ईमान लाएंगे।

0: और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो।
1: والأرض وضعها للأنام
0: और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवा किए जो आपस में मिलते हैं.
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें दो चश्मे बह रहे हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और इन बागों के अलावा दो बाग और हैं,

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्स।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

0: सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, रबीउल अव्वल की 13 और अगस्त की 27 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने उलमाए कराम पर जोर दिया है कि वो माशरे में इत्तेहाद, भाईचारे और अमन के फरोग के लिए अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान और दौलत मुश्तरका ने नौजवानों के लिए मौके पैदा करने के लिए बाहमी तआवुन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। कौमी सेहत के वजीर ने पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में आतिशजदगी के वाकये की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान से चीन के लिए तिल के बीजों की बरामदात रवां साल के पहले 7 माह के दौरान $10 करोड़ से तजावज कर गई हैं। नेपाल में तबाहकुन सैलाब के बायस 150 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा क्रिकेट टेस्ट आज लॉर्ड्स में शुरू होगा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उलमाए कराम पर जोर दिया है कि वो हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उस्वाए हसना की रोशनी में माशरे में इत्तेहाद, भाईचारे और अम के फरोग के लिए अपना किरदार अदा करें। इस्लामाबाद में सालाना बैन अल-अक़वामी सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस के खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उलमाए किराम की ये अहम जिम्मेदारी है कि वो कौम की रहनुमाई करें और खास तौर पर नौजवानों को फिरकावारियत, इंतहा पसंदी और गुमराह कुन नजरियात से महफूज रखें। उन्होंने उलमाए किराम पर जोर दिया कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवादारी, मुकालमे, दरगुजर और हमदर्दी का पैगाम आम करें और इस बात पर जोर दिया कि इल्मी इख्तलाफात को तकसीम का सबब नहीं बनना चाहिए। वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो इस्लाम की तालीमात और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वाए हसना के मुताबिक जिंदगी बसर करें जो इनफरादी और इज्तमाई जिंदगियों में हिदायत का मुकम्मल सरचश्मा है। एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ, इसलिए ये हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि माशरती, सियासी और कौमी मसाइल के हल के लिए इस्लामी इकदार से रहनुमाई हासिल करें। पाकिस्तान ने दौलत मुश्तरका के बानी रुकन की हैसियत से तंजीम के साथ अपने मजबूत अज़्म का इआदा किया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने इन ख्यालात का इजहार लंदन में दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल शर्ली बोचवे से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने नौजवानों की तरक्की, मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाले असरात से निमटने और मुआशी तरक्की के हवाले से तंजीम के एजेंडे के लिए पाकिस्तान के अज़्म का भी इआदा किया। इसहाक डार ने दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल को मशरक वुस्ता की हालिया सूरत हाल, बिलखसूस अमरीका और ईरान के दरमियान अमन के लिए पाकिस्तान की जानिब से सालिसी की कोशिशों से आगाह किया। शर्ली बोचवे ने इस सिलसिले में पाकिस्तान और बिलखसूस नायब वजीर आजम की कोशिशों और सालिसी पर उन्हें मुबारकबाद दी। दोनों जानिब से बिलखसूस नौजवानों के लिए ज्यादा मौके और फवायद पैदा करने के लिए बाहमी तआवुन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। कौमी सेहत के वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अगर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद में आतिशजदगी के वाकये की तहकीकात में उनकी जानिब से किसी गफलत या कोताही का तायुन हुआ तो वो एहतसाब का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जोर दिया कि हकायक शफाफ तहकीकात के जरिए सामने आएंगे। एक निजी न्यूज चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने यकीन दिलाया कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जो भी जिम्मेदार पाया गया उसे नहीं बख्शा जाएगा। वजीर ने जोर दिया कि जो लोग कसूरवार पाए जाएं उन्हें कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया और नए तौसीशुदा इमिग्रेशन एरिया का जायजा लिया। उन्होंने इमिग्रेशन के अमल का मुशाहिदा किया और मुसाफिरों से बातचीत के दौरान मालूमात और उन्हें फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने FIA हुकाम को हिदायत की कि सफरी दस्तावेजात की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि नामुकम्मल सफरी दस्तावेजात रखने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत ना दी जाए। सेनेट के चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। वो कंबोडिया में दूसरी बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंडोनेशिया के ऐवान नुमाइंदगान से स्पीकर डॉक्टर सुल्तान बख्तियार नजमुद्दीन से गुफ्तगू कर रहे थे। दोनों रहनुमाओं ने कॉन्फ्रेंस के एजेंडे और बैनुल पार्लिमानी तआवुन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान से चीन के लिए तिल के बीजों की बरामदात रवा साल के पहले 7 माह के दौरान 10 करोड़ डॉलर से तजावज कर गई हैं। चीन की कस्टम इंतजामिया के ताज़ा तजारती आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने इस अरसे के दौरान चीन को 1,03,000 मेट्रिक टन से जायद तिल के बीज बरामद किए, जिनकी मजमू मालियत तकरीबन 10,05,00,000 डॉलर रही। ये आदाद शुमार गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में बरामदी हजम में तकरीबन 110% और बरामदी मालियत में 72% इजाफे की अक्कासी करते हैं। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा और पार्टी चेयरमैन शबीर अहमद शाह की बिगड़ती हुई सेहत और भारतीय जेल में उन्हें तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के तर्जमान एडवोकेट अरशद इकबाल ने श्रीनगर में जारी एक बयान में हुकूमत पाकिस्तान, दुनिया भर की हुकूमतों और रहनुमाओं और इंसानी हकूक की बैनुल अक्वामी तंजीमों से अपील की कि वो भारतीय जेलों में कैद कश्मीरी सियासी रहनुमाओं और कैदियों को दरपेश मुश्किलात का फौरी नोटिस लें। नेपाल में अचानक आने वाले शदीद सैलाब के बायस कम अज कम 157 अफराद हलाक हो गए हैं। नेपाली वजीर आजम के दफ्तर के मुताबिक तिब्बत के इलाके गेरोंग काउंटी में 265 अफराद लापता हैं, जिनमें सैकड़ों सयाह और कानकुन शामिल हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तिब्बत की सरहद के करीब शिमाली नेपाल में तबाहकुन सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने के बायस कीमती जानों के ज़िया और बड़े पैमाने पर तबाही पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर ने एक्स पर अपने पैगाम में सोगवार खानदानों से हमदर्दी और नेपाल के अवाम और हुकूमत के साथ यकजहती का इजहार किया। वजीर आजम ने एक्स पर अपने अलग पैगाम में कहा कि वो नेपाल के जिला रसोवा और दीगर मुतासर इलाकों में शदीद सैलाब के बायस कीमती इंसानी जिंदगियों के नुकसान और बड़े पैमाने पर तबाही पर इंतहाई गमजदा हैं। खाकसार तहरीक के बानी माहिर रियाजियात मुसन्निफ और मजहबी स्कॉलर अलामा अनायतुल्ला मशरकी की 63वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वो 25 अगस्त 1888 को अमृतसर में पैदा हुए। उन्होंने इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रियाजी और तबीयात में इम्तियाजी तालीम हासिल की। वो एक बुलंद पाया आलिम और कई किताबों के मुसन्निफ थे। 1931 में अलामा मशरकी ने खाकसार तहरीक की बुनियाद रखी, जिसमें नज्म व ज़ब्त, खिदमत और इताअत पर जोर दिया गया। अलामा इनायतुल्ला मशरकी 1963 में आज के रोज लाहौर में इंतकाल कर गए थे। शाम के सदर अहमद अशरा और रूस के उनके हमनसब व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन पर दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शामी सदारती दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने शाम और खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए बाहमी रवाबित मजीद मजबूत बनाने का फैसला किया। आलमी यौम झील आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद झीलों के माहौलियाती निज़ाम की अहमियत के बारे में आलमी सतह पर शऊर उजागर करना है। इस दिन के मौके पर झीलों के तहफ्फुज़, बहाली और पायदार इंतजाम की ज़रूरत को उजागर किया जाता है, ताकि हयातियाती तनवों का तहफ्फुज़ और आने वाली नस्लों के लिए आबी वसाइल को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा क्रिकेट टेस्ट आज लॉर्ड्स में शुरू होगा। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि शिमाली इलाकों में मतला जुजवी तौर पर अबरालूद रहेगा। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बाज बड़े शहरों का दर्जे हरारत, इस्लामाबाद 26 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 30, कराची और पिशावर 28, कोयटा 20, गिलगित 16, मरी 17 और मुजफ्फराबाद 24 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के लिए महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां और बारामूला में मौसम जुजवी तौर पर अबरादूद और खुश्क, जबकि जम्मू में गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। आसुब रिकॉर्ड किया गया दर्ज हरारत श्रीनगर, पुलवामा, शुपियां 17 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 28, लेह 7, अनंतनाग 18 और बारामूला 19 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तजियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk पर।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back. Hit music. On your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

0: This is FM 101.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: This is FM 101.
1: देखे तो जो इधर

0: This is FM 101.
1: Je tu lab da wafa phir dani labni ruk jaye sada sada.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: दिस इज FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए सऊदी अरब के मरकजी किरदार पर पाकिस्तान की भरपूर सताइश का इआदा किया है। पाकिस्तान बहरी शोबे में इस्लाहात के बारे में वज़ीर-ए-आज़म की टास्क फोर्स के तहत जदीद बंदरगाहों के जरिए आलमी तिजारत और लॉजिस्टिक्स का मरकज बनकर उभरा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। और नेपाल में कस्बों और वादियों में सैलाब आने से 165 अफराद हलाक हो गए हैं।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.
4: Thank you.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: देसा दा राजा मेरे बाबा।

0: This is FM 101.
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

सनम ओ जिगर, तुम कहो क्या ही खबर कैसे कटी ये रातें हैं। कहते हैं सब मगर कोई

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए सऊदी अरब के कलीदी किरदार की तारीफ का अदा किया है। वजीर दाखिला ने FIA को इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों और हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की हिदायत की है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाइयों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। पाकिस्तान आइंदा हफ्ते बिश्केक में 2 रोजा सरबराही इजलास के बाद 1 साल की मुद्दत के लिए शंघाई तआवुन तंजीम की सदारत संभालेगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत और फराग दिलाना मुआवनत और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए उसके अहम किरदार की भरपूर सताइश का अदा किया है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाब बिन सईद अल मालिकी से गुफ्तगू करते हुए किया, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात और तजारती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के लिए सुबकदोश होने वाले सफीर की शानदार खिदमात को सराहा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: Listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade.

ये दुनिया झूठी लोग लूट लेते अपने ही यहाँ। सर उठा के चल मगर कदम भी देख कर उठा। दुनिया बढ़ गई है सही और गलत की जंग में। मैं ना सही ना मैं गलत, मेरा ना

0: सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और इलाकाई अमन में किरदार पर सऊदी अरब की तारीफ की है। पाकिस्तान अगले हफ्ते से 1 साल की मुद्दत के लिए शंघाई ताउन तंजीम की सदारत संभालेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 11 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा क्रिकेट टेस्ट लॉर्ड्स में जारी है।
1: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं, इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर, पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए। Register now at cyberhackathon.pk.
2: This is FM
3: 101.1. Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: Mind Khaled, summer cum laude.

सुनते रहिए FM 101 101 101।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

जैसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: शाम के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और इलाकाई अमन में किरदार पर सऊदी अरब की तारीफ की है। पाकिस्तान और कुवैत ने बाहमी दिफाई तआवुन मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का अयादा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 11 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। अक़्वामे मुत्तहदा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर बदस्तूर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़िया इलाका है। और अब खबरों की तफ़सील।
1: दिस इज़ FM 101.1।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: इतने हैं उजाले जिंदगी क्यों बुझ रही है।
1: अस्सलामुअलैकुम, रात के 8 बजे हैं, ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज
2: और मैं हूँ मुजाहिद खान।
1: पहले शामिल करेंगे अहम खबरों का खुलासा।
2: वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और इलाके अमन में किरदार पर सऊदी अरब की तारीफ की है।
1: वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों की बढ़ती हुई दिलचस्पी का खैर मकदम किया है।
2: पाकिस्तान और कुवैत ने मौजूदा अस्करी तआवुन को फ़रोग देने के लिए प्रोटोकॉल एग्रीमेंट 2026 पर दस्तखत किए हैं।
1: वज़ीर दाखला ने FIA को इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस नेटवर्क्स और हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने की हिदायत की है।
3: This is FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: मां दा दुध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गजा है। माओ अपने बच्चे नू पैदाइश दे पहले घंटे विच ही दुध पिलाना शुरू कर दियो। पहले 6 महीनियां तक बच्चे नू सिर्फ अपना दुध दियो, इथों तक के पानी भी ना दियो। 6 महीनियां बाद मुनासिब इजाफी गजा दे नाल नाल 2 साल दी उम्र तक अपना दुध पिलाना जारी रखो। बिला वजह डब्बे दे दुध ते फीडर दी वरतों तों परहेज करो, क्यों जे मां दे दुध दा कोई बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा रोशन पाकिस्तान। ए पैगाम रेडियो पाकिस्तान वालों मफादे आमा लई पेश कीता गया है।
2: We will be back after this short commercial break. Stay with us.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: मादा दुध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गिजा है। माँ अपने बच्चे नू पैदाइश के पहले घंटे विच ही दुध पिलाना शुरू कर देवे। पहले 6 महीने तक बच्चे नू सिर्फ अपना दुध दियो, इथों तक कि पानी भी ना दियो। 6 महीने बाद मुनासिब इजाफी गिजा दे नाल नाल 2 साल की उम्र तक अपना दुध पिलाना जारी रखो। बिलावजह डब्बे के दुध ते फीडर की वरतों तो परहेज करो, क्यों जे माँ के दुध का कोई नेमुल बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा रोशन पाकिस्तान। ए पैगाम रेडियो पाकिस्तान वालों मफादे आमा लई पेश किया गया है।
2: After this short commercial break, stay with us.
3: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी। सोच

0: मधक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मधक सा गया हूँ।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: मां दा दुध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गजा है। माओ अपने बच्चे नूं पैदाइश दे पहले घंटे विच ही दुध पिलाना शुरू कर दियो। पहले 6 महीनों तक बच्चे नूं सिर्फ अपना दुध दियो, इत्थों तक के पानी भी ना दियो। 6 महीनों बाद मुनासिब इजाफी गजा दे नाल नाल 2 साल दी उम्र तक अपना दुध पिलाना जारी रखो। बिला वजह डब्बे दे दुध ते फीडर दी वरतों तों परहेज करो, क्यों जे मां दे दुध दा कोई बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा रोशन पाकिस्तान। ए पैगाम रेडियो पाकिस्तान वालों मफादे आमा लई पेश कीता गया है।
2: We will be back after this short commercial break. Stay with us.

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: वो एक्चुअली
1: अपनी दोस्त से बात कर रही थी ना कि सुरमई रंग बहुत पसंद है आपको।
2: आपकी एक अमानत थी,
3: वो लौटाने आया।
4: शदीद मोहब्बत करता हूँ आपसे।
5: तो तुम खुशी खुशी रहो यहाँ पे, क्या नहीं रह गया, हम भाग नहीं सकते।
6: FM 101 नाल नाल सड़े ते नाल नाल तुवाडे। क्यों जी, कोई शक है क्या?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: माँ दा दुध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गिजा है। माँ अपने बच्चे नू पैदाइश के पहले घंटे विच ही दुध पिलाना शुरू कर देवे। पहले 6 महीनों तक बच्चे नू सिर्फ अपना दुध दियो, इथों तक कि पानी भी ना दियो। 6 महीनों बाद मुनासिब इजाफी गिजा दे नाल नाल 2 साल की उम्र तक अपना दुध पिलाना जारी रखो। बिला वजह डब्बे के दुध ते फीडर की वरतों तो परहेज करो, क्यों जे माँ ने दुध का कोई नेमुल बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा, रोशन पाकिस्तान। यह पैगाम रेडियो पाकिस्तान वालों मफाद आमा लिए पेश किया गया है।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum to all of you. Radio Pakistan FM 101 ka barah rast Lahore ka studio hai aur अमूमन ऐसा होता है कि इस प्रोग्राम में डॉक्स आपका साथ दिया करते हैं. नाइट थेरेपी के नाम से ये प्रोग्राम होता है.
1: रास्तों में कहीं
0: बट आज
1: तुम रस्मन ही
0: आज किसी मसरूफियत के बिना पर वो नहीं आ पाए. सो रहमान अनवर आपका साथ निभाएगा आज रात के 2 बजे तक.
1: यस
0: इस प्रोग्राम में हम कोई ना कोई टॉपिक रखेंगे जिसको हम लेके चलेंगे 12 बजे तक. और फिर उसके बाद जैसे ही 12 बजे के बाद का समय होगा और हम अपना वो ही वाला प्रोग्राम अधूरी बातें स्टार्ट करेंगे. बातें करेंगे और साथ ही साथ 1 बजे के बाद आपके लिए अफसाना शामिल करूंगा. आज भी मैं आपके लिए एक अफसाना लेकर आया. आप साथ निभाएंगे तो बहुत अच्छा एहसास मिलेगा. बस थोड़ा सा मुझे टाइम लगे. चीजें बिखरी हुई हैं उनको समेटना है, जैसे कि पोस्टर अपलोड करना है अब ताकि आपका मुझसे रابطे का कोई तो जरिया होना चाहिए. किसी तरीके से तो आप मुझ तक पहुंचे. और MCR से मेरे बहुत प्यारे भाई, मुझे उठकर खड़ा होना पड़ता है आदिल भाई जब भी आते हैं. आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बाय द वे आज के प्रोग्राम में हम बहुत सी बातें करने वाले हैं और मुझे मावनत हासिल रहेगी, दरकार रहेगी, दस्तयाब रहेगी आदिल भाई की. और अमान हुआ करते हैं, ड्यूटी ऑफिसर हैं और मेरा साथ निभाया करते हैं. बहुत अच्छा एहसास मिलता है. पता नहीं क्या मसला है कि ये चल नहीं रहा है आज. बाय द वे 10:22, थैंक यू वेरी मच. बस एक सेकेंड का टाइम होता है, आदिल भाई आ जाते हैं. थैंक यू सो मच. बेस्ट हो गया, जबरदस्त हो गया. ठीक है, 10:22, बड़े अरसे के बाद 10 से 12 वाला प्रोग्राम कर रहा हूँ. बहुत लंबा अरसा बीत गया, मुझे लगता है 2-3 साल हो गए. लेकिन उससे पहले के 2-4 साल थे उनमें हमने 10 से 12 वाले बहुत से प्रोग्राम्स किए. वेंसडे, थर्सडे और सैटरडे नाइट 10 से 12 किया करते थे हम, याद है ना? 3 मुलाकातें हुआ करती थी हफ्ते में. ये ट्रैक एक बार फिर से मुकम्मल सुनते हैं. तब तक के लिए मुझे जरा टाइम दें, मैं चीजों को समेट लूं, फिर वापस आऊंगा टॉपिक के साथ. बातें करेंगे आपके साथ वही वाली जो आप करना चाहते हैं. ठीक है ना?
2: जख्म दिल पे है दवा करो, आओ मिलकर रस्म मोहब्बत.
0: मैं वापस आता हूँ.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: मां दा दुध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गजा है। माओ अपने बच्चे नूं पैदाइश दे पहले घंटे विच ही दुध पिलाना शुरू कर दियो। पहले 6 महीनों तक बच्चे नूं सिर्फ अपना दुध दियो, इथों तक के पानी भी ना दियो। 6 महीनों बाद मुनासिब अजाफी गजा दे नाल नाल 2 साल दी उम्र तक अपना दुध पिलाना जारी रखो। बिला वजह डब्बे दे दुध ते फीडर दी वरतों तों परहेज करो, क्यों जे मां दे दुध दा कोई बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा रोशन पाकिस्तान। ए पैगाम रेडियो पाकिस्तान वालों मफादे आमा लई पेश कीता गया है।
0: सुनते रहिए FM 101।
1: ए पैगाम रेडियो पाकिस्तान वालों मफादे आमा लई पेश कीता गया है।
0: सुनते रहिए

10:30 इस प्रोग्राम में हमारा और आपका साथ रहेगा 12 बजे तक, और उसके बाद फिर दूसरा प्रोग्राम भी मैं करूंगा अपना अधूरी बातें 12 से लेकर रात 2 बजे तक। बहरहाल कैसे मिजाज हैं आप सबकी? आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि तमाम सुनने वाले मेरे पाक परवरदिगार की रहमत के साए तले होंगे, मेरे अल्लाह ताला की हिफ्ज़ अमान में होंगे। सबसे पहले मैं आज मुझसे बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट भी की, और मैं खुद भी चाह रहा था कि वो एक जो मैंने अंदाज अपनाया हुआ था गुज़िश्ता कई सालों से, जो टूट रहा है मुझसे कि सबसे पहले प्रोग्राम में आने के बाद मैं उन लोगों के लिए ज़रूर दुआ करता था जो किसी बीमारी में, किसी परेशानी में, किसी उलझन में मुब्तला हैं। तो आज फिर वही अंदाज, वही एहसास आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जितने भी इस दुनिया में लोग रहते हैं, ख्वाह वो किसी भी परेशानी, किसी भी मुश्किल, उलझन, किसी बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको उस परेशानी, उस उलझन से निजात अता फरमाए, उस बीमारी से उनको निजात अता फरमाए, और सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी और खूबसूरत ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगस्त 27, 2026, और बहुत से लोग मुझे ड्राइविंग के दौरान सुन रहे होंगे लाहौर में, मुख्तलिफ शहरों में, तो आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि प्लीज ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली। सीट बेल्ट का इस्तेमाल इसलिए कीजिएगा कि आपकी जिंदगी की हिफाजत करने की कोशिश करती है, ना कि आप सब आपको चलान से बचाती है, ठीक है ना? हमेशा हम जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, आर्जिस होते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, कहीं पे किसी एक जगह पे स्टक नहीं होते। शायद हमारी ट्रेनिंग ही इस तरह से की गई होती है, या हमने अपने आप को ट्रेन ही इसलिए किया होता है, इस तरह से किया होता है कि हमें हर वक्त हालात हाजरा के ऊपर भी नज़र रखनी होती है। हमें साथ ही साथ अपने अंदर चलने वाले बहुत सारे ऐसे एहसासात जो बाद में जाकर शायद किसी मसले की वजह भी बन सकते हैं, किसी प्रॉब्लम की वजह भी बन सकते हैं, या फिर किसी खुशी का एहसास भी दिला सकते हैं, हमें उन पर भी नज़र रखनी पड़ती है। हर लम्हा अपने आप के साथ एक मुसलसल हालत जंग में होते हैं, अपने आप को समझने की, अपने आप को समझाने की, अपने आप को ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में काम रखने की, पुर उम्मीद रखने की, हमारी अपनी एक ज़ात के साथ जंग होती है, एक कोशिश चल रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजर

बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उम्र का एक हिस्सा भी बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें होने लगती हैं, जैसे जैसे मुख्तलिफ किताबों से वर्क करदानी होने लगती है, जैसे जैसे मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ें सुनकर उस आवाज़ के अंदर मुख्तलिफ एहसासात को ढूंढने की कोशिश करना कि वो जज्बा कहाँ से पैदा हुआ, वो एहसास किस तरह से जन्म लिया, उसने इस लफ्ज़ को इस खूबसूरती से, इस मुकम्मल जज्बे के साथ किस तरह से बोला, वो किस तरह से जज्बा उसके ऊपर बीता होगा, इन तमाम छोटी छोटी बहुत माइनर सी बातों को भी हम बहुत गौर से सोच रहे होते हैं। देखने वाले को, सुनने वाले को, सामने मौजूद इंसान को इस बात के बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता, इतनी जल्दी पता नहीं चलता। फेसलेस एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशन लेस होता है चेहरा, नज़र नहीं आता चेहरे से कि इस वक्त इसके दिल में क्या चल रहा है। बाज़ुकात आम लोगों के ऊपर ऐसा हो जाता है, पता नहीं हमारे अंदर कुछ एक अलग सी एक कैफियत होती है। ऐसा नहीं है कि मैं ज़माने से ख़ुद को जुदा गिरदानता हूँ, जुदा समझता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हमारे अंदर डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है शायद, बिल्कुल डिफरेंट सा है, अलग सा है, जो इससे पहले शायद कभी दूसरे लोग महसूस ना कर सकते हों या पूरी ज़िंदगी भी शायद वो महसूस नहीं कर पाएंगे। वो उन जगहों तक, उन एहसासात तक, उन गहराइयों तक शायद पहुंच नहीं पा रहे होंगे। अपने दिमाग के अंदर तस्वीर किस तरह से इलेक्ट्रिकल वेव्स के जरिए से पहुंचती है, किस तरह से न्यूरॉन्स का इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ मैसेजेस को कन्वे करने के लिए, सेकंड के किस माइक्रो हिस्से के अंदर हम तक वो पैगाम पहुंचता है, हम उसको प्रोसेस करने के बाद बहुत उजली सी इमेज हमारे सामने निकल कर सामने आती है। जैसे इस वक्त मैंने रोशनियाँ जलाई हुई हैं तो मुझे सामने दीवार के मुख्तलिफ पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं। जैसे सामने जो गोल घड़ी है वो मुझे नज़र आ रही है, वॉल क्लॉक, जिसमें 10:40 दिखा रहा है वक्त, लेकिन जो सुई तेज़ी से चल रही होती है वो 12 पे पहुंच रही है और अब एग्जैक्ट 40 हो चुके हैं। ये वक्त किस तरह से, वक्त के धारे के अंदर किस तरह से हम सफ़र कर रहे हैं या किस तरह से वक्त हमें लिए हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है, इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। जज्बात इस तरह से हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं, अल्फाज इस तरह से हमारे ऊपर असर करते हैं कि शायद तलवार का भी वो वाला एहसास नहीं होता, किसी चाकू किसी छुरी से भी वो वाला एहसास नहीं मिल सकता जो अल्फाज के ज़रिए से हमें महसूस हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि वो इस लम्हे क्या सोच रहा होगा, उसने ये बात क्यों कही होगी, उसने क्यों कहा होगा कि ख्याल रखिएगा। बज़ाहिर तो इस लफ्ज़ के अंदर सिर्फ ये है कि वो शायद हमारे लिए नेक नियति रखता है, वो कह रहा है कि ख्याल रखिएगा, लेकिन अगर साबिका मालूमात जो पहले हमारे जहन के ऊपर नक्श है, जो पहले हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जवाबात सवालात की सूरत में बाज़ुकात जंग जारी रही है, तो उससे बाज़ुकात एहसास ये मिलता है शायद ये बेरुखी वाले अल्फाज हैं, ख्याल रखिएगा। जो इंसान कभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करता हो, जो हमेशा ये कहता हो कि क्यों तबीयत क्यों ख़राब कर ली है तुमने, तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं चेक करवाया, दवाई क्यों नहीं ली तुमने, मेडिसिन क्यों यूज़ नहीं करते हो तुम, तुम्हें अपना ख्याल नहीं है, और फिर एक वक्त में आकर अगर उसे ये पता चले कि तबीयत ख़राब है तो वो ये कहे कि क्या डॉक्टर को चेक करवाया, और अगर हम आगे से उसके साथ अल्फाज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, गुफ्तगू का दौरानिया बढ़ाने के लिए ये कह दें कि नहीं चेक नहीं करवाया, मुझे लगता है अपने आप ठीक हो जाएगा, तो वो आगे से ये कहे कि ठीक है फिर ख्याल रखिएगा अपना, अचानक से अल्फाज तो वही हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस पैदा हो गया है, एक एहसास मिल गया है, चाहे सिर्फ मैसेज में ही क्यों ना लिखा हो। जज्बात इस तरह से हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं, इसको सोचो का ओवरफ्लो नहीं कहते, इसको बहुत बारीकी से क्लीन ऑब्जर्वेशन कहते हैं। बहुत बारीकी से किसी शख्स के ऊपर अगर निगाह हो
अगर किसी इंसान के ऊपर बहुत बारीकी से सोच विचार की गई हो, हर वक्त उसका चेहरा जहन में, ख्यालों में, हर जगह उसका चेहरा समाया रहता हो, अगर हम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हों, तो हमारे ऊपर मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज होते हैं। आज का सवाल आपके साथ शेयर करने वाला, 10:42 पे आपसे सवाल शेयर कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पोस्ट मैंने अपलोड कर दी है, बहुत सिंपल सी पोस्ट है, नाइट थेरेपी विद आरजे रहमान अनवर लिखा हुआ है। आप चाहे तो फेसबुक पे जाके फौरन से लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, अपने होने का हमें एहसास दिला सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने होने का हमें एहसास दिलाएं। आप लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, सरगोधा, सियालकोट, जहां जहां जहां से भी, हैदराबाद, बिक्षा, आजाद कश्मीर, जहां जहां से भी हमें सुन रहे हैं, जिस भी पाकिस्तान के हिस्से से सुन रहे हैं, प्लीज आप आएं, अपने होने का हमें एहसास दिलाएं। और एहसास दिलाने के लिए एक टॉपिक है मेरे पास, एक सवाल है मेरे पास,

0: अगर किसी इंसान से आपको उल्फत हो जाए, आपको मोहब्बत हो जाए, अगर आप किसी को चाहते हो, किसी चीज को चाहते हो, तो क्या उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए? मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जिस चीज को चाहा है क्या उसको पाने की कोशिश करनी चाहिए? हम इसको डिफरेंट वर्ड्स के अंदर लेके जा सकते हैं, मुख्तलिफ डायमेंशंस के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि एक तो डायमेंशन इंसान हो गया, दूसरी डायमेंशन हम कोई लफ्ज, कोई कामयाबी की कोई एक चीज हो सकती है, कोई एक ख्वाहिश हो सकती है, हम उसको भी लेके चल सकते हैं। लेकिन मेन फोकस हमारा इंसान के ऊपर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंसान हमें सुनते हैं, आप सुनते हैं तो हम हैं, वरना हमारा कोई वजूद नहीं। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, FM 101 को तख्लीक ही इसलिए किया गया था कि ये आपके साथ बहुत करीबी रابطے में रहे, आपके साथ बहुत करीबी बातचीत हो हमारी, आप अपने एहसासात बराह रास्त हमसे शेयर कर सकें, आप अपने ख्यालात बराह रास्त हमसे शेयर कर सकें, ठीक है ना। मैं इस बात को थोड़ा सा आगे और बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन मेरे सामने मुझे घड़ी ये बता रही है कि 10:44 हो चुके हैं, मुझे यहाँ पे एक कमर्शियल ब्रेक प्ले करनी है, और ये कमर्शियल ब्रेक्स जो है ना ये बस 12 बजे तक हैं, उसके बाद जो है वो कोई कमर्शियल ब्रेक नहीं होगी। वैसे भी 15 मिनट के बाद एक कमर्शियल ब्रेक हम प्ले करेंगे, सो ये प्रोमो सुनते हैं, इसके बाद कमर्शियल ब्रेक।
1: सुनते रहिए FM 101।
2: मां दा दूध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गिज़ा है। मावां नूं अपने बच्चे दे पैदाइश दे घंटे दे विच दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिदा है। पहले 6 महीने तक बच्चे नूं सिर्फ अपना दूध दिओ, इत्थे तक कि पानी भी ना दिओ। 6 महीनियां दे बाद मुनासिब इजाफी गिज़ा दे नाल नाल 2 साल दी उम्र तक अपना दूध पिलाना जारी रखो। बिना वजह डब्बे दे दूध ते फीडर दी वरतों तों परहेज करो, क्यों जे मां दे दूध दा कोई बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा, रोशन पाकिस्तान। ऐ पैगाम रेडियो पाकिस्तान वालों मुफादे आमा लई पेश कीता गया है।
1: सुनते रहिए FM 101।

ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं एफएम 101 की लाइव ट्रांसमिशन नाइट थेरेपी विद आरजे रहमान अनवर. अमूमन ये प्रोग्राम आपके साथ आरजे डॉक्स किया करते हैं और आज वो अपनी किसी मसरूफियत की बिना पर आज प्रोग्राम करने के लिए नहीं आ पाए.

तो सवाल मैंने आपसे ये किया था कि जिस भी चीज को चाहा हो क्या उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हों, मुख्तलिफ चैलेंजेस हों, मुख्तलिफ तरीके से हम पर अटैक कर रहे हों, बहुत मुश्किल लग रहा हो उस चीज को हासिल करना, उस इंसान को हासिल करना, अपनी जिंदगी के अंदर इज्जत और एहतराम वाला वो दर्जा उसे अता करना बहुत मुश्किल लग रहा हो, और फैसलों का इख्तियार सिर्फ आपके पास ना हो या उस शख्स के पास ना हो, आपकी फैमिलीज बीच में इन्वॉल्व हो, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं लड़कों और खास तौर पे लड़कियों के अंदर, बहुत सारी चीजें नोटिस की जाती हैं, बहुत सारे एहसास नोटिस किए जाते हैं।

क्या कहेंगे आप इस बारे में, क्या कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हम इस टॉपिक को लेकर मुख्तलिफ जगहों से होते हुए जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों को टच करते हुए जाएंगे, मुख्तलिफ इससे रिलेटेड बहुत सारे दूसरे छोटे छोटे छोटे बड़े जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी एहसासात हैं, उनको भी हम साथ लेते हुए चलेंगे। बाज़ोकात हम अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, कोशिश हाथ में रख दी गई है, कोशिश करना लाजिम कर दिया गया है, लेकिन जिसको चाहा हो, जिसको चाहा हो, क्या उसे अपनाने की, उसे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इंसान अपने मन से, अपने दिल से बहुत अंदर किसी डीप जगह से उसे चाहने की कोशिश करता है, उसे अपनाने की कोशिश करता है। ये ख्यालात बहुत पहले आहिस्ता आहिस्ता तसलसल से मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपकी ज़ात के अंदर नुमाया होते रहते हैं। इन चीज़ों को बाज़ औक़ात सालों भी लग जाते हैं, लेकिन जब वो इतनी पुख्ता हो चुकी हो, अंदर कहीं एक जगह उसकी बन गई हो, कोई एक हिस्सा उसका हो गया हो, ऐसी सूरत हाल में दरमियान में बहुत सारे दूसरे भी लोग होते हैं। इस दुनिया के अंदर सारी चीज़ें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, लेकिन क्या हमें कोशिश करनी चाहिए और कोशिश कैसे करनी चाहिए, ये भी एक सवाल है। हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी फिल वक्त के लिए मेरा ये दिल चाह रहा है कि एक ट्रैक मैं आपके साथ शामिल करूं। आप अपने तमाम एहसासात, तमाम ख्यालात मुझसे शेयर कर सकते हैं कुछ तरीक़ेकार। सबसे पहले आपको बता दूं, अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर आपने लिखना है 101 स्पेस देकर अपना नाम, अपना पैगाम और उसे भेज देना है 4471 4471। हमारे और आपके दरमियान रابطے का नंबर है। जल्दी से आएंगे, अपने होने का हमें एहसास दिलाएंगे, हमें बताएंगे, हमें बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा, सच कह रहा हूं। जी हाँ, सबसे पहले अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखिए, मैसेज ऑप्शन में जाकर लिखिए, क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाकर लिखिए 101 101 हिंसों में, उसके बाद स्पेस देकर यानी थोड़ा सा फासला देकर अपना पैगाम, अपना नाम और उसे भेज देना है, सेंड कर देना है उसे 4471 4471। सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर मैंने पोस्ट अपलोड कर दी थी, मैंने आपको ये बता दिया। सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज facebook.com/fm101 लाहौर, आप जाकर वहां पे हमारी पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने ख्यालात, अपने जवाबात, अपने एहसासात, इस समय आप क्या सोच रहे हैं, क्या दिल चाह रहा है आपका सुनने का, कोई ट्रैक भी फरमाइश कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी ट्रैक होना चाहिए, या फिर दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, एक मुल्क को छोड़कर, जी हाँ, आप कोई भी ट्रैक फरमाइश कर सकते हैं। आज मेरा दिल चाह रहा है मैं आपकी फरमाइश भी साथ साथ प्ले करूँ, लेकिन प्रोग्राम की नौयत के हिसाब से खूबसूरत सा ट्रैक फरमाइश कीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा मुझे। सो फेसबुक पे सर्च कीजिएगा FM101 लाहौर, आपको हमारा पेज मिल जाएगा, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब जो तीसरा तरीकेकार है, सबसे आसान तरीकेकार, आप हमें कॉल कर सकते हैं और मैं आपकी लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। लाइव कॉल्स पे भी आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, आपसे खेलेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको, आपके दिल को मुतमईन और खुश करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इंसान जब खुद चाहता है तभी वो मुतमईन होता है, या फिर जिससे वो मुतमईन होना चाहता है अगर वो कोई बात कह दे, कोई बहुत छोटी सी बात भी, वो अगर सिर्फ रहमान कह दे तब भी इंसान मुतमईन हो जाता है, सच कह रहा हूं। जाहिद, बहुत शुक्रिया, जाहिद अली फ्रॉम गिलगित हमारे साथ मौजूद, 4471 पे आपने मैसेज किया। अस्सलामुअलैकुम, आपने कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सो जल्दी से आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, अपनी फरमाइश भी, अपने एहसासात भी, सवाल का जवाब भी, कि जिसको चाहा जाए क्या उसे अपनाने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं। अगर कोई और सवाल भी दिल में है तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपसे उस बारे में भी बात करें।

ये वाला ट्रैक सुनने का दिल चाह रहा है, इसके बाद वापस आते हैं। ये प्रोग्राम है नाइट थेरेपी, आपके साथ आपका मेजबान रहमान अनवर।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: मादा दुध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गिजा है। माँ अपने बच्चे नू पैदाइश के पहले घंटे विच ही दुध पिलाना शुरू कर देवे। पहले 6 महीनों तक बच्चे नू सिर्फ अपना दुध दियो, इथों तक कि पानी भी ना दियो। 6 महीनों बाद मुनासिब इजाफी गिजा दे नाल नाल 2 साल की उम्र तक अपना दुध पिलाना जारी रखो। बिला वजह डब्बे के दुध ते फीडर की वरतों तो परहेज करो, क्यों जे माँ ने दुध का कोई नेमुल बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा रोशन पाकिस्तान। यह पैगाम रेडियो पाकिस्तान वालों मफादे आमल ही पेश किया गया है।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके मैसेजेस का, आप सबके मोहब्बतों का, जो मुझे यहाँ पे बारिशों की तरह महसूस हो रही हैं, जो बहुत बहुत मज़े की होती हैं, खुशी का एहसास नुमाया हो रहा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम भाई राव, आतिफ फ्रॉम मुल्तान, पोइट्री सुनाए, सुनने का दिल है, आप सुना दो अपनी जबान में। अच्छा ठीक है, अब तुमने गौर से राव, आतिफ तुमने गौर से ये प्रोग्राम सुनते रहना, तुम्हारे लिए मैं पोइट्री शामिल करूंगा किसी भी वक्त। वो एक वक्त होता है जब खास तौर पे पूरे वजन के साथ पोइट्री अंदर उतरती है, तो मैं तुम्हारे लिए शामिल करूंगा, तुमने बस कहीं जाना नहीं है, सुनते रहना है, ठीक है ना। मुश्तबा पाक आर्मी से हमारे साथ मौजूद, पाक आर्मी को, पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस को मेरा सलाम। फरहा हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात कोशिश करने वालों को उनकी असल वक़्त का एहसास भी हो जाता है। फरहा, अस्सलाम वालेकुम, अमजद अली हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अली वारिस ऑफ चनियोट, रहमान भाई आपका प्रोग्राम अच्छा लगा, अल्लाह आपको खुश रखे, इब्रारुल हक का ट्रैक सुना दें प्लीज। किथे गई पिंड दियाँ टालियाँ ते बेरी, यार ये मैंने प्ले करना है, ये बहुत अरसा हो गया यार, तुमने अच्छा किया अली, बहुत खूबसूरत ट्रैक है, इसको मैं प्ले करता हूँ, ठीक है भाई। एक सॉन्ग सुना दें, मेरा नाम मैं तेरा नाम बताऊँ किसको, राव आतिफ फ्रॉम मुल्तान, मैं तेरा नाम बताऊँ किसको, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। फरहा हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सॉन्ग मैं तेनू किन्ना चाहनी हाँ सोच तो परे, ये प्ले नहीं हो सकता, आई एम रियली सॉरी। निमरा शाह हमारे साथ मौजूद है लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम, सब सुनने वालों को कोशिश नहीं करनी चाहिए जब आप जानते हो कि कोशिश करने के नतीजे में अपनों और दूसरों की नजर में अपना मुकाम और इज्जत खो दोगे। अच्छा, मैं आ जाती है, इसका मतलब मैं मौजूद रहती जब चाहा जाए तो मैं मौजूद रहती, आप ये कहना चाह रही हैं निमरा शाह। अच्छा निमरा शाह हैं, लड़की हैं। अच्छा ये देखिए, मैं कोई जेंडर शेमिंग नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा मैं, बस मैं ये कह रहा हूं कि देखें, मैंने अभी कहा ना कि लड़कियां सोच समझ कर करती हैं बातें, और ऐसा करना चाहिए। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा निमरा, लेकिन मुझे लगता है कि जब इंसान किसी से चाहत में होता है, किसी की हसरत में होता है, किसी से मोहब्बत में होता है, तब ये जो लफ्ज मैं है ना, आई, ये खत्म हो जाता है, तुम वो बस वो ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम, एक गाना सुना दें, मनी मैं केनू आखा, मेरा नाम इमाम बख्श कराची से, इमाम बख्श कराची से हमारे साथ। इमाम, मैं कोशिश करता हूँ ये वाला ट्रैक ढूंढूं, ये सेम टू सेम एज इट इज लिखने की कोशिश करता हूँ, तुमने जैसे लिखा है मुझे समझ नहीं आया वैसे। जहूर हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम, सदा खुश रहें, सदा खुश और तंदुरुस्त रहें रहमान भाई, आपकी आवाज और बोलने का अंदाज और अलग किस्म की शायर, वो शायरी बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन और दिल को लुभा लेने वाली होती है। अल्लाह पाक आपको और भी ज़्यादा बासलाहियत और तंदरुस्ती अता फरमाए, आपके आपको सुनने, आपको सुन के दिल और दिमाग हैरान कुन अंदाज में समुंदर के गोतों में डूब जाते हैं। खुश रहो, वालेकुम वस्सलाम, अल्लाह पाक आपको आपको अपने लिए रास्ते से किसी को चाहिए कोशिश करनी चाहिए। अच्छा मुझे समझ नहीं आया, ये बहुत कुछ अलग अंदाज में रोमन उर्दू में आपने लिखा है जहूर, मुझे थोड़ा सा एंड में समझ नहीं आया, लेकिन मैं दोबारा पढ़ने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बना रहा हूँ। 11:25 आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपने होने का हमें एहसास दिला सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर मिलाना होगा 0421100101, लाहौर का सिटी कोड है 042, और उसके बाद 1110101, 1111001, और लाहौर से ये प्रोग्राम आपके लिए शामिल किया जा रहा है। टेलीफोन लाइन पे पहली लाइव कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम जी।
0: अरे मैडम कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? सब ठीक है?
1: अल्लाह का बड़ा करम है। आज शेर ने मुझे बड़ा सताया हुआ है। मैं रहा गुजर हूँ तेरी, मंजिले मुराद नहीं, यहाँ ठहर के तसल्लुम खराब मत करना।
0: यहाँ से बताते नहीं होते क्योंकि अभी ये मैंने अपलोड नहीं किया ये पर्सनल आईडी पे मौजूद है बस, अभी क्योंकि अभी नाइट थेरेपी चल रहा है तो ये डिफरेंट तरीके से प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसमें शायरी नहीं कर रहा
1: हूँ। प्रोग्राम भी वही लाजवाब तो ठान कर आयो। पता आज हो गया, मैं अपनी नमाज वगैरह पढ़ी थी, मैंने कहा पढ़ूँ फिर देखूँ क्या है। पौने 11 बजे मैंने रेडियो ऑन किया, आई, मैंने कहा ये क्या तो मैं बैठी गई,
0: ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, रहमान कैसे आ गया, ये आवाज क्या, मैं ये आवाज सुनना चाह रही थी इस वजह से आ गया। मैडम आप सलामत रहें, हमेशा खुश रहें, आप इतनी मोहब्बतों से नवाजती हैं, आपको अल्लाह हमेशा खुश रखे।
1: बहुत शुक्रिया, आमीन तुम्हारा आमीन। रहमान मैं आपको एक तहरीर सुनाती हूँ, आप जरा देखिएगा इसे।
0: जी जी,
1: आप कह ना मोहब्बतों के सिलसिले,
0: जी
1: बताती हूँ ये होता क्या है। ये कितनी खूबसूरत बात है कि कोई बिना मतलब के आपको कॉल करे, ना कोई ज़रूरत ना कोई फ़ायदा, बस दिल चाहा और आपकी आवाज़ सुनने को फ़ोन मिला लिया। और इस कॉल का वाहिद मकसद सिर्फ ये हो कि आपकी खैर व खबर पूछ ली जाए। ऐसी फिक्रें आम नहीं होती, वो मोहब्बत है जो लफ्ज़ों से नहीं नापी जाती, जब कोई सिर्फ इसलिए याद करे कि आप ठीक हैं या नहीं। दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, ये एहसास बता देता है कि कहीं ना कहीं कोई दिल आपके लिए धड़क रहा है बिना मतलब के। ये जो छोटी सी तवज्जो दरअसल सबसे बड़ी, और यही ख्याल सबसे बड़ी मोहब्बत है, सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। और ये ख्याल इंसान को दुनिया में खास करके ने होने खास होने का एहसास दे जाता है।
0: हाँ।
1: तो हुजूर वाला है मोहब्बत सिर्फ एक वही मोहब्बत नहीं जो एक लड़का और लड़की की,
0: लड़का और लड़की की बिल्कुल ऐसे ही
1: है ना,
0: सिर्फ वही नहीं है,
1: बहुत तरह के दोस्त होते हैं, भाई होते हैं,
0: बहुत से लोग होते हैं,
1: लोग ऐसे होते हैं।
0: अगर आप किसी भी कैनवस में इसको देख सकते हैं,
1: देख सकते हैं कोई ऐसे लोग जिन्हें हमने शक्लन देखा भी नहीं है, लेकिन बस उनके लिए दिल हर वक्त दुआ करता है, सलामत रहे, अच्छे रहे, आवाज सुनिए, सुकून मिल गया या पूछ लिया। तो ये मोहब्बत असल में जो आप कह रहे हैं ना कि कोशिश की उसे हासिल करने की, कोशिश तो जब करेंगे ना कि जब दूसरी तरफ भी हमें कुछ लगे कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ है मामला, हम कोशिश करेंगे तो बंदा हमारा हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता रहमान,
0: ऐसा नहीं होता,
1: ऐसा नहीं होता। आप कितनी भी कोशिश कर ले, अगर दूसरे बंदे को यह एहसास ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है, तो कैसे आपको हो जाएगा, आप खुद गिरेंगे उसकी नजरों में और जलील हो जाएंगे।
0: लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ परवीन साहिबा कि अगर दोनों तरफ कोशिश और पूरा पूरा एहसास भी हो, पूरा पूरा ख्याल भी हो, तो लेकिन वो जो फैमिली के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं एक चैलेंज पाया जाता हो, उन्होंने एक खास स्टैंडर्ड सेट किया हुआ हो, तो ऐसी सूरत हाल में क्या हो सकता है?
1: रहमान उसमें तो फिर बगावत होता रहता है बंदा ना,
0: लेकिन बगावत ना करना चाहता हो, कोई दूसरी कोई सूरत हाल, कोई
1: माँ बाप को या जो भी बड़े हैं उनको राजी होना,
0: क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्या अपनी बात उनके सामने रखनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का,
1: बिल्कुल जो भी कोई है अपना बताएं उनको अपना जो आपका इरादा है, कि अगर आप लोग नहीं तैयार हुए तो मैं वैसे भी।
0: वो जो आंखों में एक इज्जत और एहतराम का एक लिबादा होता है, वो जो एक पर्दा होता है जिसको, जो बहुत बारीक होता है, जिसको हम कभी भी उल्टाना नहीं चाहते, पलटाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि वो हमारे दिल का हमारे अल्फाज के बगैर अंदाजा लगा लें, वो चीज सामने ले आए। अच्छा, इसकी एक सूरत हाल ये भी हो सकती है कि अगर लड़की के सामने उसका रिश्ता पेश किया जाए या उसके सामने बात की जाए और वो किसी अलग अंदाज में उनके सामने रखा गया है वो रिश्ता, और एक ऐसा कि जैसे अरेंज्ड ही है, और वो हाँ भी कर दे लेकिन स्टैंडर्ड्स पे पूरा ना उतर रहा हो, तो क्या ऐसी सूरत हाल निकल सकती है, क्या उसकी बात माननी चाहिए?
1: मेरा मेरा ख्याल तो यही है रहमान के बच्चों को मायूस नहीं करना चाहिए, यही से गलत कदम उठने शुरू होते हैं जो उनके दिल में आ गई है दोनों साइड से है वो हाँ। बड़ा खतरनाक आ जाएगा मामला हो जाएगा। आप खुशी खुशी माँ बाप से आपस में दोनों फैमिलीज बैठ के बात करें और रिश्ता तय करें अगर खुशी चाहते हैं। अगर आपने जबरदस्ती की कहीं और कर दी ना खुश रह सके जिंदगी खराब हुई और खुदा ना खास तलाक वलाक हो गई तो फिर क्या होगा। यहाँ माँ बाप की बहुत बड़ी हैसियत और अहमियत है, माँ बाप को अपने बच्चों की खुशी देखनी चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ।
0: सलामत रहें प्रवीण साहिब, आप बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम दरअसल ना एक कमर्शियल ब्रेक प्ले करने का हो गया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। एक कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं, आपने कहीं जाना नहीं है, सुनते रहना एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर।
2: सुनते रहिए एफएम 101।
3: मां दा दुद्ध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गजा है। माओ अपने बच्चे नूं पैदाइश दे पहले घंटे विच ही दुद्ध पिलाना शुरू कर। मां दा दुद्ध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गजा है। माओ

कोई बदल नहीं, सेहतमंद बच्चा रोशन पाकिस्तान। ए पैगाम रेडियो पाकिस्तान वालों मफादे आमा लई पेश कीता गया है।

0: राइट, वंस अगेन वेलकम बैक। आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बना रहा हूँ। आपसे मैंने ये पूछा है कि अगर किसी को चाहा जाए तो क्या उसे अपने अपनाने की, हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हर एतबार से, हर तरीके से आप मुझे बता सकते हैं। टेलीफोन लाइन पे आपकी दूसरी लाइव कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: अस्सलाम वालेकुम भाई
0: जी। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम नासरा, मैं औरंगी टाउन से बात कर रही हूँ।
0: नासरा कैसे मिजाज है आपकी? आप खैरियत से हैं? आप ठीक हैं?
1: अल्लाह का शुक्र है भाई, आप कैसे हैं?
0: अल्लाह का बहुत करम है, बहुत एहसान है। नासरा प्रोग्राम सुन रही हैं आप?
1: जी जी भाई, आज तो बस मैं तो यही सोच रही थी कि काफी दिन से सोच रही थी आपको शो सुनूंगी, लेकिन एंड जिस टाइम आपको शो का टाइम होता था ना 12 से 2
0: जी,
1: तो शो खत्म होता था तो चैनल ही बंद हो जाता था भाई। मैं सोचती रहती थी कि आपका शो किसी तरीके से सुनूं मैं ना।
0: अच्छा, चैनल बंद हो जाता था। आप कहाँ से मुझे सुन रही हैं इस वक्त?
1: कराची से।
0: कराची से? ऐसा होता है कि जो जुमेरात वाला प्रोग्राम होता है ना नासरा, वो सिर्फ लाहौर के लोगों के लिए होता है। अभी जब मैं 12 से 2 में कन्वर्ट करूंगा, 30 मिनट के बाद 11:34 हो गए हैं, 12 बजे के बाद ट्रांसमिशन चेंज हो जाएगी, वहां से इस्लामाबाद से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। और मैं लाहौर से फिर भी ऑनर रहूंगा, क्योंकि ये 12 से 2 वाला जो प्रोग्राम होता है जुमेरात को, ये भी मेरा ही प्रोग्राम होता है। ये सिर्फ लाहौर और इसके गिर्दोनवा के जो लोग हैं वो सुन सकते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर, या फिर हमारे एप्लीकेशन के थ्रू जो कि रेडियो पाकिस्तान है उसके ऊपर लाहौर पे क्लिक करके हमें सुन सकते हैं इंटरनेट के थ्रू।
1: अच्छा, तो आपसे एक शो एक बार इससे पहले सवेरे शो आया था शाम के टाइम में, तो मैं सुनी थी, मैं सुनूंगी, मुझे टाइमिंग तो पता थी लेकिन इत्तेफाक नहीं होता था ना सुनने का। आज मैंने ट्रेनिंग किया वो टॉप शो सुनने के लिए, तो इत्तेफाक से आप आ गए, मुझे चला शुक्र है।
0: अरे बहुत शुक्रिया, अरे बहुत शुक्रिया नास्टा, थैंक यू वेरी मच। वैसे बुध की रात को जो 12 से 2 वाला प्रोग्राम होता है वो पूरे पाकिस्तान में सुना जाता है।
1: अच्छा, असल में भाई मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है ना, वरना मैं
0: नहीं, आप फ्रीक्वेंसी पे भी सुन सकती हैं जैसे आज सुन रही हैं। कल मतलब कि कल प्रोग्राम नहीं हुआ 12 रबीउल अव्वल की वजह से, और कल का प्रोग्राम ऑन एयर होता तो वो पूरे पाकिस्तान में सुना जाता है, वो नेटवर्क पे होता है। क्या कहना चाहेंगी? ये बातें छोड़ते हैं, वो बातें करते हैं जो आप करने के लिए आएंगे। बताएं मुझे क्या कहना चाहेंगी टॉपिक के हवाले से, अगर किसी को चाहा है तो क्या उसे अपनाने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं, या फिर हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं।
1: हाँ, तो ये तो दोनों तरफ से होता है ना भाई, अगर मैं तो कोशिश करूँ, अगर अगला बंदा ना चाहे तो फिर मेरी भी कोशिश बेकार हो जाएगी ना।
0: अच्छा, ऐसा होता है कि एक इंसान चाहता है और दूसरा इंसान नहीं चाहता?
1: ऐसा होता है कि हम अगर किसी को चाहते हैं ना तो अगला इंसान हमें नहीं चाह रहा होता, तो वो एक तरफा कहला जाता है,
0: एक तरफा हो जाता है।
1: एक तरफा होता है तो फिर वो उसमें फिर कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि जब वो बंदा ट्रस्ट नहीं है हमसे तो फिर फायदा नहीं है ना इस चीज का।
0: अच्छा, ये बहुत लॉजिकल बात है। वाकई में जब आप चाह रहे हैं दूसरा नहीं चाह रहा, तो फिर उसे हासिल करने की कोशिश तब मतलब गैर मुतवक्के हो जाती है, जरूरी नहीं है।

0: ज्यादा कोशिश करके हम हासिल भी कर लेते हैं ना, तो उससे कोई फायदा नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि वो हमसे मतलब वो हमारी तरफ रुझू नहीं कर पाता उस तरीके,
1: हाँ मोहब्बत नहीं कर सकता हमसे, वो उस जगह पे नहीं होता। हाँ लेकिन मैं बात कर रहा हूँ दो लोग जो एक दूसरे को चाहते हों, तो क्या उनको एक दूसरे को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे पीछे आपके अपने घर वाले या उसके घर वाले कितने ही स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए हों, कितनी भी बातें उन्होंने सोची हों, कितने भी ख्यालात, एक उनकी भी पसंद होती है ना बाज़ूकात, हमारे माँ बाप की भी, वो भी चाह रहे होते हैं हमारी बेटी इस तरह से खुश रहे, हमारी बेटी इस तरह से खुश रहे। लेकिन इस ज़माने में जो मौजूदा दौर चल रहा है, इसमें बाज़ूकात इंसान को कोई अच्छा लग जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको एक हलाल तरीके से, एक खूबसूरत तरीके से कन्वे करना, उसको बताना कि अगर आपको पसंद है आप एक बार देख लें, मुझे वो इंसान पसंद है, लेकिन इंसान की हद तक पसंद है, क्या ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? अगर बेऐब हो, अगर वो भी अच्छा हो, अगर आप भी अच्छे हों, लेकिन स्टैंडर्ड्स जो आपने सेट किए हुए हैं वो फाइनेंशियली भी हो सकते हैं, वो मॉरली भी हो सकते हैं, अलग अलग एक सोच का जाविया डिफरेंट हो सकता है, कौमें डिफरेंट हो सकती हैं, ज़ातें डिफरेंट हो सकती हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए?
0: ये है कि दोनों तरफ की जो फैमिली होती है उन लोगों को मुतमईन करना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, इनके हवाले से जब वो मुतमईन हो जाएंगे, मिल लेंगे, बात कर लेंगे, उन्हें भी समझ हो जाएगी कि नहीं ये एक दूसरे के लिए सही है, तो फिर मामला हल होने के चांसेस हो जाते हैं ना।
1: बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नासिरा आपने बताया ना नाम,
0: जी
1: बहुत शुक्रिया नासिरा, कुछ और कहना चाहेंगी?
0: भाई बस आपका शो सुन रही हूं।
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सलामत रहे, हमेशा आबाद रहे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, रिक्वेस्ट सॉन्ग तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल भाई राहत फतेह अली खान, मैं कोशिश करता हूँ आई थिंक फिर सॉन्ग लगे तुमसे मन की लगन, ये सॉन्ग प्ले करें बाकी। बाकी बातें तो होती रहेंगी आपको 2 बजे तक हम सुन ही रहे हैं, हा हा का है, अभी जो बातें आप सुना रहे हैं वो तो सुन ही रहे हैं हम साथ साथ अच्छा ये हंस भी रहा है, ये कोई लड़का है, ये मुझे क्या नाम बताया तुमने अपना, अच्छा नाम नहीं बताया, ठीक है मैं प्ले करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, कोशिश करनी चाहिए लेकिन अगर फिर भी ना मिल सके तो उस शख्स का सारी उम्र एहतराम और हया करना चाहिए। अज़र राजपूत, ये अभी तक की बहुत खूबसूरत बात है, अज़र बहुत मच्योर सोच है, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे मैसेजेस भी होने चाहिए। 4471 के पैगाम भी साथ साथ बढ़ता रहूंगा, लेकिन साथ ही साथ आपकी लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बना रहा हूं, और उसके साथ साथ दूसरी चीज ये है कि आप फेसबुक के ऊपर भी मेरे साथ बने हुए हैं, उसको भी हम शामिल करेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम, इरम वेलकम बैक, खुश आमदेद एक बार फिर से कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे?
2: थैंक यू सर, आपने मेरा सॉन्ग प्ले किया, वो मैंने अनिल आपी के लिए डेडिकेट किया था,
1: ठीक है,
2: और
1: आई एम रियली सॉरी, मेरे ज़हन से निकल गया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है
2: जी। और टॉपिक पे वो जब जैसे कि मैंने पहले बात की थी, बात तो वही है, लेकिन जो भी आप कह रहे हैं ना कि माँ बाप या फिर
1: अनिला साहिबा कह रही हैं कि मेरा भी नाम ले लिया करो, 4471 का पैगाम, ठीक है अनिला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हमें सुन रही हैं, अनिला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, अनिला साहिबा हमारे साथ मौजूद है, ठीक है
2: सर सर बात तो सुने
1: जी, इरम बताइएगा।
2: आप बात कर रहे थे ना, तो आजकल की जो बात है ना, आजकल कोई किसी की ना अपनी कोई खुशी देख रहा है ना बच्चों की खुशी देख रहा है।
1: अच्छा।
2: मेरे अंदाजन जो जो मुझे इस वक्त नजर आ रहा है ना, अना के दौर में, अना के आड़ में रिश्ते,
1: हाय हाय हाय हाय हाय, इरम इरम वेरी नाइस वेरी नाइस,
2: अना
1: वेरी नाइस, अना की वजह से बहुत से रिश्ते टूट रहे हैं,
2: तो सर हाँ ऐसे रिश्ते होने नहीं चाहिए, बाज़ूकात वो हो तो जाते लेकिन वो चलते नहीं।
1: अच्छा ये अना किस हवाले से आप कह रहे हैं, लड़का और लड़की में?
2: सर रिश्ते घर वालों के, घर वालों के।
1: अच्छा घर वालों के, ठीक है ऐसे नहीं होने चाहिए। हाँ। मैं भी वही समझा,
2: बाज़ूकात हो जाते हैं लेकिन चलते नहीं।
1: चलते नहीं।
2: और जो मोहब्बत प्यार मोहब्बत से काम हो जाए वो उसमें क्या बरकत भी होती है, मोहब्बत भी होती है, सब कुछ होता है।
1: हाँ सही कहा आपने
2: सर, सलामत रहे, खुश रहे, आप मेरे गाना प्ले किया और सब सुनने वालों को सलाम, सलामती की दुआ और अनिल आपकी को स्पेशल
1: थैंक यू वेरी मच। राम खुश रहें, आबाद रहें
2: सर, उनकी कॉल ले लेना, वो आप ही आप कोशिश करती रहना।
1: अच्छा ठीक है अल्लाह हाफिज। अगर आप कॉल ना करती तो शायद उनकी कॉल आ जाती। 11:42 टाइम इस प्रोग्राम का खत्म होने वाला है, फिर उसके बाद हम 12-2 में कन्वर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी तबीयत?
1: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका?
3: अल्हम्दुलिल्लाह,
1: बहुत लंबे अरसे के बाद तुम्हारा नाम मेरे जहन में आया, कहाँ गायब रहते हो तुम?
3: बिल्कुल अभी तो आपकी शो 12-2 बजे होता है,
1: उस वक्त तुम सो जाते हो है ना?
3: बिल्कुल सो जाता है। तो आज आप शो शायद इस्लामाबाद पे भी,
1: तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती ना सच्ची, तुम कहते कि 2 बजे तक रहमान भाई को सुनकर सोऊंगा।
3: बिल्कुल ये बात है आपके, बिल्कुल
1: सही है ना, मैंने पकड़ लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, तुमने काम भी करने होते हैं सुबह में, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, ऐसे कभी कभी मुलाकात हो जाया करेगी।
3: बिल्कुल बिल्कुल, आज आपको शो इस्लामाबाद से भी सुनाया जा रहा है मेरे ख्याल से।
1: कहाँ सुना जा रहा है?
3: इस्लामाबाद में,
1: हर जगह सुना जा रहा है, ये नेटवर्क पे प्रोग्राम है, डॉक्स वाला प्रोग्राम है ना ये नेटवर्क पे प्रोग्राम है।
3: हाँ बिल्कुल, और आपका टॉपिक भी जबरदस्त है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ।
1: हाँ।
3: अक्सर मैंने ये चीज नोट किया हुआ है, जब आप किसी को चाहते हो उसको कोशिश करते हो, वो आपसे पीछे दूर होती जा रही है। जब अगर आप किसी को चाहते हो, अगर उसका अपने की कोशिश करते हो, तो ज्यादा मिनटें वगैरह इस पे नहीं कर लेना, कुछ दिन गैप दे देना चाहिए ताकि उसका अपने दिमाग खुल जाए। जब आप किसी चीज के पीछे पड़ जाते हो उसमें आपकी इज्जत वैल्यू खत्म हो जाता है।
1: ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह, खुश रहो।
3: ठीक है,
1: बहुत शुक्रिया,
3: ओके, अल्लाह
1: वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, इमाम बख्श कराची, सबसे अच्छी और अच्छी और सच्ची मोहब्बत माँ की मोहब्बत है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी।
4: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात
1: जी।
4: कौन की आन बान शान व जान उस्ताद मोहतरम रामान अनवर साहब।
1: अरे अरे अरे
4: उस्ताद मोहतरम इश्ताक मलिक बोल रहा हूँ, रेडियो एंड टीवी फनकार गुजर खान से।
1: अरे खुशामदीद कहते हैं,
4: बड़े अच्छे के बाद हाजिर हुआ हूँ, मेरी हाजिरी को कबूल करना, आपके जलवे जब हमें बेकरार करते हैं तो दस्तक के लिए आपके घर पर हाजिर हो जाते हैं, हमारी हाजिरी को कबूल फरमान।
1: वाह जी वाह, कबूल कर लिया जी, खुश रहे जी।
4: उस्ताद मोहतरम सवाल टॉपिक इतना खूबसूरत है कि एक अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक पैगाम छुपा हुआ नजर आता है, अगर कोई समझे तो
1: जी।
4: उस्ताद मोहतरम ये है कि इसका जवाब ये मैं देना चाहता हूँ कि ये अगर कोशिश करे, अगर कोशिश की जाए तो इंशाल्लाह जो भी काम होता है वो हार नहीं होती बल्कि फतह होती है।
1: हार नहीं होती फतह होती है, लेकिन कोशिश करना जरूरी है।
4: और अल्लाह को याद करके जो भी काम करे, मैंने जो भी काम किया अल्लाह को याद करके पुकार कर तो मेरा हर काम हुआ है।
1: ठीक है, बहुत खूबसूरत बात। नहीं देखें, रहमान भाई कह लिया करें, अच्छा नहीं लगता ऐसे, आप इतने प्यार से बुला तो रहे हैं लेकिन आप रहमान कह लिया करें, ठीक है
4: जी जी जी जी। मेरे आप उस्ताद मोहतरम है,
1: अरे
4: आप आज भी उस्ताद है, कल भी, परसों और तरसू भी आप।
1: जिम्मेदारी बहुत बड़ी डाल रहे हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, खुश तो रखे, आबाद रखे
4: जी। मैं एक शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत।
1: जी कहिएगा।
4: उस्ताद मोहतरम शेर है, ये है, अर्ज करता हूँ कि मेरे आंसू का हर कतरा तेरी निशानी है,
1: मेरे आंसू का हर कतरा तेरी निशानी है
4: रहमान।
1: हाँ
4: मेरे आंसू का हर कतरा तेरी निशानी है रहमान।
1: अरे
4: जो तू देखे तो मोती है,
1: अरे
4: जो तू देखे तो मोती है, जो ना देखे तो पानी है रहमान।
1: आए मैं कुर्बान, वाह वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने।
4: उस्ताद मोहतरम आपके इतने खूबसूरत अल्फाज, मैं असल में मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता, आपके सामने नहीं बोल सकता कि कभी नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने आपको उस्ताद बोला और आप हमारे उस्ताद हैं, और मैं अगर उस्ताद बोल दिया तो मेरी जो मैंने बोला है इसको कबूल करना।
1: मैं कबूल करता हूँ, सलामत रहे, थैंक यू सो मच।
4: अच्छा ये मैं असादे मोहतरम में दो बंदों का सलाम देना चाहता हूँ
1: जी, कहिए।
4: एक तो शायद इंसारी साहब हैं जी, हैदराबाद से आते
1: हैं,
4: जो प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपको सलाम पेश कर रहे हैं।
1: इसके अलावा
4: मेरी एक बेटी है असादे मोहतरम, बहुत आपके शो में आती रहती है, आपके शो में भी आती रहती है, और इसका नाम है रमशा बेटी है। और इसके अलावा अभी एक हमारी जो आप ही आई थी परवीन, आप ही आई थी कराची से, उन्हें भी बहुत बहुत सलाम। और मेरी कमांडर 101 जो बेटी है सब रानी, उन्हें और आयन की पूरी टीम को बहुत बड़ा सलाम। उताजी अगर कोई गलती हो गई तो दोनों आज जो
1: अरे अरे ऐसा ना, अल्लाह आपको सलामत रखे, थैंक यू सो मच।
4: मुझे माफ कर देना,
1: नहीं कुछ कुछ ऐसा नहीं,
4: जान के साथ आता हूँ तो जाता हूँ तो माफी मांग कर जाता हूँ बंदे को।
1: अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे,
4: आबाद रखे, जिंदाबाद रहमान अनवर जिंदाबाद।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हाय हाय, दिल थोड़ा सा ऐसे ऐसे खिंच सा जाता है जब, ठीक है, अल्लाह आपको मुकम्मल बेतहाशा इज्जतों से नवाजे। इस्लामाबाद से सदफ रानी साहिबा का आपने नाम लिया और बहुत खूबसूरत शख्सियत की मालिक हैं, जबरदस्त इंसान हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आबाद रहें। फैसल चौधरी हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। मरीना बिलाल हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम रहमान, वेलकम मरीना फ्रॉम लाहौर, थैंक यू वेरी मच। नजीर खोसो हमारे साथ सोहबतपुर बलूचिस्तान से, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा अफजाल बेग हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम मिर्जा अफजाल बेग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एट ग्वादर फ्रॉम चकवाल, अरे वाह वाह वाह सर, गुलाम अली साहब की कोई गजल सुना दीजिए, मैं अगले प्रोग्राम में कोशिश करूंगा। गुलाब हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम आरजे रहमान, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं गुलाब? हमदुल्ला मला खैल, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमदुल्ला मला खैल फ्रॉम क्वेटा, वेलकम टू द शो। ये मुझे याद है ये वाला मैसेज, हमेशा हर प्रोग्राम में होता था तुम्हारा। गुलाब कह रहे हैं वेरी वेरी नाइस शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। रेड लाइन ग्राफिक हमारे साथ मौजूद हैं, वी आर मिसिंग आरजे डॉक्स बट सर यू आर बेस्टेस्ट टू, थैंक यू वेरी मच। डॉक्स तो फिर मोहब्बत है ना, डॉक्स तो फिर मेरी जान है ना, अल्लाह उसको उन्हें हमेशा सलामत रखे। हमदुल्ला मलखल कह रहे हैं, अगर कभी किसी पर कोई एहसान करो तो अपनी शान बढ़ाने के लिए उस एहसान का कभी ऐलान मत करना, वरना वही ऐलान तुम्हारे नाफरमान होने का सबब बन जाएगा। अच्छा यार एक दुआ मैंने करनी है, मैं भूल ना जाऊं कहीं, मेरा भाई है और बहुत गहरा ताल्लुक है उसके साथ मेरा, नाम है उसका आरजे ज़ियान जुम, बहुत तबीयत ख़राब है उनकी और मेदे के बहुत सारे मसाइल बने हुए हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ आप सब दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको बहुत जल्दी मुकम्मल सेहत याबी अता फरमाए, मुकम्मल सेहत याबी अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनकी बीमारी से उनको निजात दे और वो बिल्कुल पहले की तरह बहुत बेहतरीन, खूबसूरत और अच्छे से हेल्दी से हो जाएं। बहुत कमज़ोर से हो गए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप उनके लिए दुआ कीजिएगा। मेरा बड़ा बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा खूबसूरत भाई है मेरा, अल्लाह ताला नज़रे बद से बचाए, अल्लाह ताला उसको हमेशा सलामत रखे। आरजे ज़ियान जुम के लिए बहुत सी दुआएं। महीना बिलाल कह रहे हैं, रहमान जिसको दिल से चाहो वो मिल ही जाता है, मगर उसे संभाल के रखना भी चाहिए। ये आपने अपने टॉपिक में ऐड करें मैं। अच्छा रेहान खान भक्कर से हमारे साथ है, रेहाना खान भक्कर से हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मलिक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी, बहुत उम्दा प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वसीम। मोहम्मद हफीजुर रहमान भक्कर से हमारे साथ मौजूद हैं, ईदगाह जनूबी भक्कर से मोहम्मद हफीजुर रहमान। मुल्तान से गुल यासीन नाज और वेलकम टू द शो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सोहबतपुर बलूचिस्तान से नजीर खोसो, मरीना कह रही हैं कि दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। कुमार बारा बंकवी, अच्छा ये कोई शायर हैं, मैंने मेरे जहन में नहीं। रेड लाइन ग्राफिक हमारे साथ है, सर आपका टाइम जो एफ एम 101 पे एक बेहतरीन वक्त होता है, आपकी आवाज में एक शेर है जो किसी को भी अपना फैन बना सकता। रिस्पेक्ट फ्रॉम लाहौर, बहुत बहुत शुक्रिया रेड लाइन ग्राफिक के, जो भी नाम है आपका। मोहब्बत देने के लिए और इज्जत देने के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। मेहमान अपनी आखिरी सांस तक करनी चाहिए कोशिश, ठीक है मरीना। उस्मा इजाज कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम अर्जुन रहमान, अल्लाह ब्लेस यू, आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा सुल्तान हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, अगर इंसान की बात करें तो इज्जत नफ्स सबसे पहली चीज है, अगर वो इंसान मुखलिस है तो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर वो मुखलिस ही नहीं तो अपनी जात की तजलील नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग बस हमें कुछ दिन खास महसूस करवाने आते हैं, कुछ दिन खास महसूस करवाने आते हैं, फिर हमें खुद ही दूर कर देते हैं, दिल भर जाता है ना उनका, बस हमें इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ना मेक बाउंड्रीज, इंसान बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है, इसलिए इतनी ज्यादा रसाई नहीं देनी चाहिए किसी को भी अपनी जात तक। वैसे सर आपकी बात से इख्तलाफ है कि लड़कियां सोच समझ कर करती हैं, ये चीज जिन्स से बालातर है। मैं वैसे ये कहने वाला था, पहला वार हो गया मुझ पे, मैं पहले ही हार मान लेता हूँ। आयशा बिल्कुल सही कहा आपने, ये किसी जेंडर का खेल नहीं, ये दोनों भी सोच सकते हैं, बाज़ुकात लड़के भी सोच लेते हैं, डिप्लोमेटिक हो जाते हैं बाज़ुकात लड़के भी, लेकिन आप ठीक कह रही हैं, ये चीज जिन से बालातर है, लड़के भी खुद से अटैच करके निकल जाते हैं। बहरहाल बेहतरीन शो है सर, आपसे एक बार मुलाकात हुई थी इंटर्नशिप पर, बहुत अच्छा लगा था, थैंक यू वेरी मच आयशा, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, और इंटर्नशिप के जो मैं उसमें मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं हो पाया उसका मुझे बहुत बहुत दुख है, बस कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं बाज़ औक़ात कि मुश्किल हो जाता है। उन दिनों बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात थे मेरे नी के, घुटने के हालात बहुत डिफरेंट थे, अभी कुछ बेहतर है, लेकिन अगले महीने में ऑपरेशन हमने करवा लेना। फिर कभी ऐसी मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर नज़ीर खोसू कह रहे हैं अगर गुब्बारा कभी आपके मुंह पर फट जाए तो गुस्सा ना करें, क्योंकि वो आप ही थे जिसने उसे बढ़ाकर उसकी औकात से बड़ा किया था। कुछ इंसानों के साथ भी हम ऐसा ही करते हैं। आप ठीक कह रहे हैं नज़ीर, हम उनको बहुत इज्जतों से नवाजते हैं, बहुत मोहब्बतें देते हैं, फूलकर गुब्बारा हो जाते हैं और फिर फट जाते हैं, हमारे ऊपर ही फट जाते हैं। नेकी करने के बाद उसके शर से बचना चाहिए, यह भी बात है। मोहतरम जनाब मलिक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी की तरफ से आपको और आपकी टीम को और आपके सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद, शहर सियालकोट जिंदाबाद, जिंदाबाद जी जिंदाबाद। खुशी के भी अपने मतलब हैं, एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था तो दूसरा उसे बेचकर, गुब्बारों वाली बातें ज्यादा कर रहे हैं आज। मोहतरम जनाब रियाज भट्टी साहब लाहौर वाले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जिंदगी में खूबसूरत लोगों से ज्यादा मुखलिस लोगों का होना जरूरी है, उज्मा एजाज कह रही। 11:55, मैं बहुत तेजी से आपके मैसेजेस इसलिए पढ़ रहा हूं, उसकी वजह यह है 12 बजे के बाद स्विच ऑफ हो जाएगा यहां से, इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद में जिशान नासिर प्रोग्राम करेंगे आपके लिए और लाहौर से मैं करूंगा। आई एम बिलाल नियाजी फ्रॉम जहलम कैंट, कोशिश भी करनी चाहिए, वालदेन को भी कहना चाहिए आप भी परख लें, उनकी मर्जी भी शामिल होनी चाहिए। खूबसूरत बात की है बिलाल, ये बहुत खूबसूरत बात है। काशिफ इरशाद हमारे साथ, रहमान भाई आई एम हियरिंग योर प्रोग्राम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड इट्स गोइंग वेरी वेल माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच काशिफ, खुश रहें, आबाद रहें, सुना करो मुझे अच्छा लगेगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, ये कुछ मैसेजेस थे आप सब लोगों के, जो मैंने 447 के पैगाम 29 मैसेजेस मैंने आपके रीड आउट कर लिए। अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ एक बार फिर से, और न्यू जो मैसेजेस हैं वो देख रहा हूँ फेसबुक की, अगर आप कुछ भी कहना चाहें मोर देन वेलकम आप कह सकते हैं, और बहुत सारे दूसरी जगह भी हैं जहां से पैगाम लेने बहुत जरूरी है। बाय द वे अभी फिल वक्त के लिए मैं ये कुछ नाम शामिल कर रहा हूँ, नज़ीर खोसो हमारे साथ, एक ट्रैक प्ले करूंगा उसके बाद 12 बजे वापस आऊंगा। आरजे जिशान खान दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ीर खोसो, मलिक वसीम मावान और हमदुल्ला हामिद चंद हमारे साथ हैं। नज़ीर हमारे साथ हैं, आयशा सुल्तान बहुत बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार अहमद बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद सुलेमान बहुत बहुत शुक्रिया, रेहाना खान भक्कर से हमारे साथ, फैसल चौधरी, रेड लाइन ग्राफिक बहुत बहुत शुक्रिया, एम एजाज अली बहुत बहुत शुक्रिया, लनूदुल इशराफ शरीफ लीबिया से हमारे साथ मौजूद, मोहम्मद हफीज़ुर रहमान भक्कर से, हमदुल्ला मला खैल गुलाब, मोहम्मद हमजा अहमद उस्मा एजाज, सनी चन्योट से हमारे साथ, मरीना बिलाल। दोबारा एक और पोस्टर आपके लिए अपलोड कर रहा हूं 12 बजे वाला, और फिर इस ट्रैक को सुनते हैं, इसके बाद वापस आते हैं। हम टॉपिक को उसी तरह से आगे लेके चलते जाएंगे और 11 बजे अभी थोड़ा सा हल्की फुल्की गुफ्तगू करेंगे, कुछ शायरी शामिल करेंगे, और फिर उसके बाद हम आपके लिए 1 बजे के बाद एक अफसाना, खूबसूरत सा अफसाना शामिल करेंगे।

0: FM 101, The Sound of New Millennium.
1: सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
0: FM 101, The Sound of New Millennium.
1: सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: 101, The Sound of New Millennium.
1: सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
0: FM 101, The Sound of New Millennium.
1: सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: FM 101, the sound of new millennium.
1: सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.
0: FM 101, the sound of new millennium.
1: सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.

तुम्हें अगर उसके होने पर यकीन है तो फिर किसी भी शय के होने की खुशी या ना होने का गम बेमानी है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं।

उसे कहना कभी मिलने चला आए। अभी लाइट्स जो हैं वो मैंने बुझा दी हैं। उसे कहना कभी मिलने चला आए, हमारे पांव में जो रास्ता था रास्ते में पेड़ थे। पेड़ों पे जितनी तायरों की टोलियां हमसे मिला करती थीं, अब वो उड़ते उड़ते थक गई हैं। वो घनी शाखें जो हम पर साया करती थीं, वो सब मुरझा गई हैं। तुम उसे कहना कभी मिलने चला आए। लबों पर लफ्ज हैं, लफ्जों में कोई दास्तां, किस्सा, कहानी जो उसे अक्सर सुनाते थे, किसे जाकर सुनाएंगे? बताएंगे कि हम मेहराब अबरू में सितारे टांकने वाले। दरे लब बोसाए इजहार की दस्तक से अक्सर खोलने वाले। कभी बिखरी हुई जुल्फों में हम महताब के गजरे बनाकर बांधने वाले। चराग और आईने के दरमियां कब से सरे साहिल खड़े मौजों को तकते हैं। उसे कहना उसे हम याद करते हैं। उसे कहना हम आकर खुद उससे मिलते, मगर मक्तल बदलते मौसमों के खून में रंगीन है। और हम कतार अंदर कतार ऐसे बहुत से मौसमों के दरमियां तन्हा खड़े हैं। जाने कब अपना बुलावा हो कि हम में आज भी एक उम्र की वारफ्तगी और वहशतों का रक्स जारी है। वो बाजी जो बिसात जहां पे खेली थी, अभी हमने न जीती है न हारी है। उसे कहना कभी मिलने चला आए कि अब की बार शायद अपनी बारी है।

कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो इंसान के अंदर उतर जाते हैं और फिर इंसान उन सवालों के जवाब किताबों में नहीं बल्कि अपनी ज़ात के अंदर, अपने मन के अंदर तलाश करने लगता है। Tonight we are not going to talk about success, failure, relationships, loneliness. Tonight we are going to talk about something much deeper. Something that belongs to the heart. Something that cannot be completely explained by words. Marifat. ये लफ्ज आपने सुना होगा ना, एक ऐसा लफ्ज जिसे हम सुनते तो बहुत हैं मगर शायद इसके मानी को, इसके एहसास को अपनी जिंदगी में कभी पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते। हम इल्म हासिल करते हैं जिसका कहा भी गया है, वी रीड बुक्स, लेक्चर्स को सुनते हैं, कलेक्ट इंफॉर्मेशन। हम अपने मजहबी रसूमात, मजहबी तालीमात, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, साइंस ऑफ हिस्ट्री, ये सब हम सीखने की कोशिश करते हैं और इस तरह हम दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी के किसी खामोश लम्हे में एक अजीब सा सवाल, एक अजीब सा एहसास, एक अजीब सा ख्याल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैं इतना कुछ जानने के बावजूद खुद को क्यों नहीं जानता? क्या मैं जो जानता हूं क्या वही हूं मैं? और शायद यहीं से इल्म और मार्फत के दरमियान फासला शुरू होता है। इल्म कहता है आई नो, मार्फत आहिस्ता से पूछती है Do you really know? इल्म आपको बताता है कि आग गर्म होती है। मार्फत वो लम्हा है जब आपको उस हरारत को अपने हाथों से या किसी भी दूसरे तरीके से उसके करीब खड़े होकर भी महसूस करने लगते हैं। मार्फत उसे कहते हैं। इल्म कहता है कि मोहब्बत एक जज्बा है। मार्फत उस वक्त शुरू होती है जब मोहब्बत उसके रवैये, आपकी बर्दाश्त, आपकी कुर्बानी और आपके किरदार में नजर आने लगती है। इल्म ये कहता है कि सब्र एक खूबी है। मार्फत उस वक्त सामने आती है जब जिंदगी आपको तोड़ने की कोशिश करे और आप फिर भी अंदर से बिखरने की बजाय संभलना सीख लें। नॉलेज कैन डिस्क्राइब रियलिटी। मार्फत ट्रांसफॉर्म्स द वे यू एक्सपीरियंस रियलिटी। और शायद यही वजह है कि दुनिया में बहुत बहुत से लोग हैं जो नॉलेजेबल होते हैं मगर वाइज नहीं होते। बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं मगर समझते बहुत कम हैं। ये बड़ा मसला है। बहुत से लोग किताबों के सफात पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं एक एक लफ्ज़ हर्फ बहर्फ, मगर अपने मन का, अपने अंदर का, अपने दिल का एक सफा नहीं पढ़ पाते। दूसरों को पढ़ने में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। कौन गलत है, कौन सही है, कौन मुझसे मोहब्बत करता है, कौन मुझसे नफरत करता है, कौन मुझे धोखा दे रहा है, हु मिस अंडरस्टूड मी, हु इज सक्सेसफुल, हु इज ब्यूटिफुल, हु इज पावरफुल। लेकिन एक सवाल हम खुद से बहुत कम पूछते हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? और शायद इंसान की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल जर्नी यही सवाल है, हु एम आई? क्या मैं सिर्फ अपना नाम हूं? क्या मैं सिर्फ अपनी उम्र हूं, प्रोफेशन हूं, डिग्री हूं, कामयाबियां हूं, नाकामियां हूं, या फिर मैं वो किरदार हूं जो दुनिया ने मेरे लिए बनाया है?
मुझे बना दिया है, या फिर मेरे अंदर कोई एक ऐसी हकीकत भी है जो इन तमाम लेबल से कहीं आगे है, कहीं कहीं मुबर्रा है, कहीं दूर है, और ऐसे मुकाम पे तसव्वुफ रोक लेता है, कहता है अपने अंदर देखो। लेकिन अपने अंदर देखें कैसे? अपने अंदर देखना इतना आसान है क्या? बिकॉज व्हेन यू लुक विदिन योरसेल्फ यू डोंट ओनली फाइंड पीस, यू ऑल्सो फाइंड योर फियर्स, योर ईगो, योर इनसिक्योरिटीज, योर हिडन डिजायर्स। You find the questions you kept running away from, है ना? और शायद इसीलिए इंसान सारी उम्र बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करता रहता है, मगर अपने अंदर You find the questions you kept running away from, है ना? और शायद इसीलिए इंसान

उसके अंदर उस गहराई तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल है। गहराई वैसे सारे समुद्रों की नाप ली गई क्योंकि वो जमीन में है, लेकिन उनके अंदर उस गहराई तक उतरना बहुत मुश्किल काम है। आसमान की वो सतह देख ली है, सितारों के फासले कैलकुलेट कर लिए हैं, दिमाग के न्यूरॉन्स तक पहुंच गए हैं, मगर इंसान अभी तक अपने दिल की गहराइयों, अपने गहराई के उस एहसास को अभी तक माप ही नहीं पाया। एक मिस्ट्री है। We have explored the universe, but we are still strangers to ourselves. मार्फत शायद उसी अजनबियत को खत्म करने का नाम है। हम आज मार्फत को समझने वाले हैं। क्या आप में से कोई ऐसा है जो मार्फत को समझता है? लफ्ज मार्फत से वाकिफ है। मैंने कहा था कि मैं ज्यादा गहरी बातें नहीं करूंगा। लेट मी टेल यू अबाउट, बाज़ुकात ऐसा होता है कि हम कुछ करना नहीं चाह रहे होते, लेकिन ऑटोमेटिकली अंदर से कोई ऐसी फील ट्रिगर हो जाती है। वो चंद लम्हों पहले नहीं थी, लेकिन अचानक से उसने आपको ट्रिगर कर दिया। यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग जो आपके अंदर चल रहा है। यू शुड हैव, करना चाहिए, हाँ, अपने आप को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल मार्फत क्या है आप अगर मुझे बताना चाहिए, मोर देन वेलकम। मैं लाइव कॉल्स इस प्रोग्राम में शामिल नहीं करता, आप जानते हैं। इस प्रोग्राम में हम आपसे जो बातें किया करते हैं वो गुफ्तगू होती है, बात होती है, लेकिन इस प्रोग्राम में थोड़ी सी हल्की फुल्की बात होती है। हो सकता है ये टॉपिक इसलिए छिड़ गया कि मुझे शायद आज अफसाना शामिल ना कर पाऊं। हो सकता है। हो सकता है आज अफसाना ना शामिल कर पाऊं। प्रोग्राम का पहला ट्रैक गला जो है वो बहुत ज्यादा थक गया। मार्फत को समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे क्या है ये, और इल्म और मार्फत के अंदर जो फर्क है उसको भी वाज़े करेंगे। तसव्वुफ को भी कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं, चाह रहा था कि मैं बुध के प्रोग्राम में बात करता, क्योंकि कहीं अंदर कोई उलझन है जो अपने आप को समझने से बार बार ट्रिगर कर रही है, बार बार कुछ कह रही है। ये मैंने ट्रैक कभी सुना है कुछ देर पहले, और पता नहीं क्यों मुझे इतना इतना इतना अच्छा लगा। मेरा दिल चाहा कि इसको थोड़ी देर के लिए 6 मिनट और 2 सेकंड के लिए इसको सुनता है। आप मेरा साथ निभाएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। I'm going to tell you about something very deeper.

0: मिल जाऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे।
1: खवातीन हजरात, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कलाकार किसी को खो के लिखते हैं, और जो गा नहीं सकते वो सुन के रो लेते हैं। तो आप सबकी खिदमत में पेश है किसी की गुजारिश, किसी की इल्तिजा, किसी की शिकायत। ज़रा तवज्जो फरमाएं।

मिल जाऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह कमाल मेरा।

ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा। इस सफर के अंदर हो सकता है हम किसी हद तक किसी जगह पे जरूर पहुंच जाए, लेकिन एट द एंड वो जो हकीकत है जिसके सामने आकर इंसान की तमाम इंटेलेक्चुअल एरोगेंस खामोश हो जाते हैं, शायद कोई फाइनल आंसर ना हो, आप ऐसा ना ढूंढ पाए, ऐसा मैं जबरन नहीं करना चाहता, लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है कि इस सफर में फाइनल आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो अहम होते हैं, जो सवाल उठ रहे होते हैं ना अंदर, परेशान करने के लिए नहीं आते, बाज़ोकात वो इंसान को जगाने के लिए आते हैं। बहुत कुछ जानते हैं कभी कभी आप, लेकिन क्या खुद को जानते हैं? इस सवाल से सफर शुरू होता है मार्फत का। आप बहुत कुछ जानते हो सकते हैं, बहुत कुछ नॉलेज भरी पड़ी हो सकती है आपके अंदर, आपने बहुत 10-15 किलो या उससे भी ज़ायद किताबें आपने ज़रूर हज़म की हैं, पढ़ी हैं आपने, मैं नहीं मानता। अगर सवाल पैदा नहीं हो रहा, अगर दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, सफ़र वहाँ पर ही ख़त्म हो गया, इख्तिताम पज़ीर हो गया। बाहर बाहर तलाश नहीं करना, आज अंदर तलाश करना। दुनिया को कुछ देर के लिए बाहर रख दें, वो जो आपके टाइटल्स हैं, आपकी आइडेंटिटीज हैं, अपनी कामयाबियां हैं, आपकी नाकामियां हैं, दुख हैं, शिकायतें हैं, सबको एक तरफ रखते हैं और सिर्फ अपने आप से मिलने की कोशिश करते हैं। नो नॉइस, नो परफॉर्मेंस, जस्ट यू, योर सॉल एंड द ट्रुथ यू हैव बीन अवॉइडिंग। अधूरी बातें रहेंगी, मुकम्मल नहीं करूंगा। कुछ बातें मुकम्मल करने के लिए नहीं होती, कुछ बातें इंसान के अंदर बस एक छोटी सी चिंगारी जलाने के लिए होती हैं, चिराग छोड़ जाती हैं, और फिर इंसान खुद अपने अंधेरों में कोई एक छोटा सा नुक्ता रोशनी का तलाश कर लेता है, रास्ता तलाश कर लेता है। मार्फत इसी तो चीज का नाम है। ये वो मालूमात नहीं है जो हमें मिली है, ये उसके अंदर से निकलने वाला इल्म है, डिवाइन नॉलेज, इल्म हकीकी, या फिर इल्म इलाही कहा जा सकता है। किसी किताब, किसी फलसफे में, सूफिया की किसी तहरीर में, ऐसा बहुत से लोग ऑफेंड हो सकते हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कैफियत है इंसान के अंदर पैदा होने वाली अजीब सी कैफियत, जहां नोइंग बिकम्स एक्सपीरियंसिंग एंड एक्सपीरियंसिंग बिकम्स ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है, बनाने का अमल है, तख्लीक करने का अमल है, निखार लाने का अमल है। किसी भी शख्स के बारे में आप हजारों सफात पढ़ सकते हैं, उसकी बायोग्राफी जान सकते हैं, उसकी पसंद नापसंद, उसकी जिंदगी के वाकयात, नजरियात तक जान सकते हैं। खुद बता सकता है यार, उससे पूछो एक बार, बड़े दुख लेके बैठे हैं सारे, पूछो तो सही एक बार, सब कुछ बता देगा वो। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप उसको हकीकतन सब कुछ जान चुके हैं। ये सब कहने की बातें होती हैं, ये सब दिल को मोह लेने की कोशिश होती है, अपना फायदा कहीं से निकालने की कोशिश होती है, लेकिन अंदर अंदर का जो एहसास होता है वो जरा डिफरेंट होता है।
ये बिल्कुल इसका कोई हरगिज़ ये मतलब नहीं है। अगर कोई सब कुछ बता रहा है अपने बारे में तो वो बिल्कुल सब कुछ बता चुका है, सब कुछ उसका पता चल चुका है। ऐसा है ही नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। किसी के बारे में जानना और किसी को जानना अलग अलग चीज है। उसके साथ रहकर यह फर्क मालूम हो सकता है। मार्फत और इल्म भी एक दूसरे को अलग अलग करते हैं इसी फर्क की वजह से। पानी के केमिकल फॉर्मूला को आप जान सकते हैं, H2O। इसके स्ट्रक्चर को भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, पूरी किताब लिख सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन सहरा में कई घंटे प्यासे चलते रहे ना, तब पता चले पानी का एक घूंट कैसा होता है। ये होती है मार्फत। उसके बारे में पढ़ लेना, उस चीज को पढ़कर समझ लेना कि अब सब कुछ पता चल गया जी मुझे। जब मुझे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पता चल गई तो मुझे सब कुछ पता चला। ऐसा नहीं, वहां से चलना पड़ता है तब पता चलता है, तब एहसास मिलता है, तब हकीकत का इदराक होना शुरू होता है। बताए ना, वो एक घूंट जो सहरा की गर्मी में कई घंटे प्यासे चलते रहने के बाद मिला हो, वो शख्स ज्यादा जानता है जो प्यासा था, लेकिन वो शख्स इतना नहीं जान सकता जिसने पानी पर 100-200 किताबें लिख छोड़ी हूं। ये फर्क है, ये फर्क है इंफॉर्मेशन वर्सेस एक्सपीरियंस। इल्म पानी के बारे में बता सकता है, मार्फत पानी की कदर महसूस कराती है। इंसान अपने बारे में बता सकता है, लेकिन जो उन मामलात से गुजरा हो, उन एहसासात से गुजरा हो, जिंदगी के मुख्तलिफ दरवाजों से होकर गुजरा हो, वो किसी शख्स की असल कदर तभी महसूस कर सकता है। अपने आप को जानने का वक्त है ये, हर बात समझ के लिए नहीं। बात समझ नहीं आ रही तो जाने दें, छोड़ दें, कोई मसला नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं। आम सी बातें करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। ये जरा डिफरेंट वक्त है, मैं जरा उलझा हूं, बेरब्त हूं। रब्त में नहीं रहता तो बाज़ोकात ज्यादा डीपर कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, ऐसा साथ जरा और तरीके से डेवलप हो रहे होते हैं और मिट भी रहे होते हैं, सिर्फ बन नहीं रहे होते, खत्म भी हो रहे होते हैं। कहीं पे कोई गुस्सा भी होता है, जज्बाती अलामत भी हो सकती है, पहलू भी हो सकता है कोई जज्बाती, लेकिन सच कह रहा हूं, हकीकत को जानने का वक्त है। मालूमात आपको मोहब्बत के बारे में बता सकती है, शेरो शायरी मोहब्बत के बारे में बता सकती है, लेकिन मोहब्बत का वजन सिर्फ मारफत में महसूस हो सकता है, वही कराती है। मौत के बारे में तो इल्म भी बता सकता है, किताबें भी बता सकती हैं, ऐसा, लेकिन मार्फत इंसान को जिंदगी की हकीकत का एहसास दिलाती है। यस, हकीकत का एहसास दिलाती है, बताती है कि क्या क्या हूं मैं। बस एक बार कोशिश तो करे कोई करीब आकर समझने की, जानने की। तसव्वुफ थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, इधर उधर, आगे पीछे। सच्चाई जानने के बाद जब आप रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं ना, तब कहीं आप तसव्वुफ की तरफ चल निकलते हैं। अपनी जात पर अप्लाई करके तो देखें एक बार। मैं खुद को जानता हूं, लेकिन आगे सवाल छोड़ दें, क्या वाकई सवाल छोड़ें, सवाल करें अपने आप के साथ, अपने आप से सवाल पूछें कि गुस्से में कैसे रिएक्ट करता हूं मैं, मुझे किस चीज से खौफ आता है।
किस रिजेक्शन से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है? किस चीज के लिए आप दूसरों का अप्रूवल चाह रहे होते हैं, देखने की कोशिश कर रही है? अप्रूवल, हाँ अप्रूवल एक बहुत बड़ा लफ्ज है, और अपनी जात के लिए किससे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, अंदर से तोड़ती कौन सी बात है आपको, अपनी कौन सी वीक मोमेंट्स दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं आप? अगर तन्हाई में हो तो आप कितने शफाफ होते हैं, कभी सोचने की कोशिश की है? अगर बिल्कुल तन्हा हो तो कितने शफाफ रहते हैं आप? कौन है तन्हाई में आप? ये सवालात पूछा करें अपने आप के साथ, ये अपने आप से मुलाकात का वक्त है। मुझे पता है जितने भी सवालात पूछ लें, लेकिन बाज़ुकात इन तमाम सवालात के मुकम्मल जवाबात नहीं होंगे, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बीइंग सीन बाय अदर्स में गुजार दिया। वो लोगों की नजर से देखना शुरू कर देते हैं हम। बहुत कम वक्त मिला है सीइंग आवरसेल्व्स, है ना। दुनिया के सामने एक अलग चेहरा होता है, घर में एक अलग चेहरा होता है। जापनीज कहावत पूरी पूरी दुरुस्त कर रहे हैं, तीन चेहरे होते हैं, डॉग्स कहते हैं चार चेहरे होते हैं। हर बंदा अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आता है, अच्छी बात है, अपना अपना ख्याल अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं पे कोई एक अलग पर्सनैलिटी है, इमेज डिफरेंट है, आइडेंटिटी डिफरेंट है। एक अलग कैफियत है, लेकिन अंदर कहीं एक दूसरा इंसान, वो जो सच्चा, वो जो पहला इंसान होता है, वो ही है बस। कुछ रखरखाव भी जरूरी होता है, सब कुछ खोलकर वाजे नहीं कर देना होता, सब कुछ बता नहीं देना होता, कुछ अपने राज भी रखने होते हैं। ये बात सच्ची है, कभी कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हम, कभी कभी बिल्कुल बह जाते हैं हम। कोई बात नहीं, वहां से ठोकर खाना जरूरी होता है, पता चल जाता है वहां पे। उनको यही लगता है कि सब कुछ जो बता दिया है अब ये मुकम्मल खुल गया। ऐसा नहीं है, और बहुत कुछ है उसके अंदर अभी, जिसको वो खुद एक्सप्लोर नहीं कर पाया शायद, अभी वो खुद समझ नहीं पाया उसको शायद। सवाल कर रहा है ना मन अंदर से, इंसान पूछ रहा है ना, हाँ हाँ ये बात सही कह रहा है। अब मेरी आवाज सुन रहे हो ना तुम? अचानक कोई खुशी भी महसूस हो रही होगी, एक मुतमईन एहसास। अब लग रहा होगा कि जिंदगी शायद मैं अपनी मर्जी से गुजारने की कोशिश कर सकता हूं। वो जो फैसला बाज़ुकात मैं कर रहा होता हूं, क्या वो मेरी ही ख्वाहिश होती है, या फिर इसमें दूसरों की तवक्कात भी हो जाती है, दूसरों की सेटिस्फेक्शन को भी हम कहीं ना कहीं एक दर्जा दे रहे होते हैं। हाँ, मार्फत में इन तमाम एहसासात से आपका मिलना होता है, मुलाकात होती है। हाँ, जब इंसान पहली बार अपने अंदर से मुलाकात करता है, अपने अंदर उस शख्स को सुनना शुरू करता है, तब सेल्फ अवेयरनेस इज द बिगनिंग ऑफ इनर नॉलेज, यहां से शुरुआत होती है। बात बहुत अहम है, खुदशनासी सिर्फ पर्सनैलिटी ट्रेट्स जान लेने का नाम नहीं। ये कहना कि मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं इमोशनल हूं, एक्सपेक्शनल हूं, एक्सेप्शनल हूं, सेंसिटिव हूं, गुस्से वाला हूं, एंग्री बर्ड हूं, सेल्फ डिस्क्रिप्शन है ये। जरूरी नहीं कि सेल्फ नॉलेज भी हो, ऐसा नहीं। मार्फत इससे कहीं आगे का सफर है। ये सवाल करती है, मेरे अंदर ये सब कुछ पैदा क्यों होता है, मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे तारीफ क्यों चाहिए, मुझे रिजेक्ट होने से या किसी की रिजेक्शन से इतना खौफ क्यों आता है? अगर कर दिया उसने मना तो कोई मसला नहीं, कोई बार चढ़ लिया। हाँ फराज, तुम्हें समझा रहा हूं मैं, समझ लो मेरी बात।
अपने आप को जिंदगी की आखिरी हदों तक लेके जाना जरूरी नहीं होता बाज़ औक़ात। डॉक्टर साहिबा आपसे भी मैं, अभी आपने कॉल की कुछ देर पहले, आपको भी मैं ये कह रहा हूँ, बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं होता, अपने आप को समझना ज़रूरी होता है। लेकिन मैं दाद देता हूँ, थैंक यू वेरी मच, आपने डाउनलोड करके उसके बाद फिर रख लिया था और अभी तक आप लाओ स्टेशन सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कंट्रोल क्यों करना चाह रहे होते हैं हम, है ना, लग रहा होता है बाज़ औक़ात के कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल है ना, पूछना है, अपने आप से पूछना है। इंसान का सामना ऐसे सवालात के बाद अक्सर अपने नफ्स से होता है, और तसव्वुफ में जो नफ्स है वो महज ख्वाहिश का नाम नहीं है। इंसान के अंदर मौजूद वो एक अलग सी चीज है, टेंडेंसी है, जो हर चीज को अपने गिर्द घुमाना चाहती है। मी, माई ओपिनियन, माई इंपॉर्टेंस, माई ईगो, माई पेन, माई सक्सेस। जब इंसान पूरी दुनिया में अपने मैं के गिर्द घूमने लगता है, तो फिर ये जो मार्फत का रास्ता है, ये जो तसव्वुफ का रास्ता है, ये जो इल्म का रास्ता है, ये धुंधला जाता है। मैं डिवाइन नॉलेज की बात कर रहा हूँ, इल्म इलाही की बात कर रहा हूँ। एक है नॉलेज, मालूमात, जो कि किताबों के अंदर मौजूद है, एक है उसके अंदर से जो इल्म हासिल होता है, सही और गलत का फ़र्क वाज़े होता है। बाज़ औक़ात लिखने वाले तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें भी बहुत सारी लिख जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पूरे मायार और न्यूट्रल रहते हुए लिख रहे हों, लेकिन ऐसा मुमकिन भी हो सकता है, ऐसा ना हो ऐसा भी है। मैं के गिर जब घूमने लगता है ना इंसान, तो फिर रास्ते धुंधला जाते हैं, अपनी ज़ात को समझने के रास्ते। मार्फत इंसान को ये बताती है कि यू आर इम्पॉर्टेंट बट यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। हकीकत सिर्फ आपकी ख्वाहिश नहीं है, आपका एहसास ही सब कुछ नहीं है, आपकी इंटरप्रिटेशन हमेशा हकीकत नहीं हो सकती, और ईगो जो है वो तो बिल्कुल भी आखिरी मायार नहीं हो सकता हकीकत का। इसी वजह से बाज़ औक़ात ये मैं इन टॉपिक्स को नहीं करता कि इसमें इंसान डूब जाता है तो फिर बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इस ज़माने में चलने के लिए दूसरे भी लवाजमात ज़रूरी होते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब अपनी पहचान करने का फैसला कर लिया हो, ये सोच लिया हो अपने आप के साथ कि हाँ, अपने नफ्स को पहचानना है, अपने आप को जानना है, तो फिर इंसान इन अल्फाज की तरफ आता है, मार्फत, तसव्वुफ, मुराकबा। ये वो चीजें हैं जो इंसान को अपने नफ्स से पहचान करवाती हैं, मिलाती हैं, बताती हैं, हकीकत का रास्ता दिखलाती हैं। इसलिए तो मैं अक्सर प्रोग्राम के आगाज में कहा करता हूं, हर वो बात जो दर्द की शिद्दत की कैफियत में खुद ही तक पहुंचा देती है, अपने आप से मिलवा देती है, हकीकत का रास्ता दिखला देती है, इस प्रोग्राम में शामिल रहती है, इसलिए तो कहा करता हूं। इंसान जब अपने अंदर के पर्दों को देखेगा ही नहीं, तो वो हकीकत को कैसे देख पाएगा। आंखों पे एक पर्दा हायल है, उसने रखा है। बहरहाल बहुत लंबी डिस्कशन हो रही है और मुझे लगता है बोर भी हो चुके होंगे आप। एक ट्रैक शामिल करता हूं, ये फ़राज़ तुम्हारी नजर है, तुम्हारे लिए, तुमने मुझे कहा था। मैसेजेस कर रहे हैं लोग कि आप कॉल्स रिसीव क्यों नहीं कर रहे, आई एम रियली सॉरी, मैं प्रोग्राम में कॉल्स मैंने लेनी बंद कर दी, मैं लाइव कॉल्स मेरे प्रोग्राम में शामिल नहीं करूंगा। पीछे डॉग्स का प्रोग्राम था इसलिए मैंने लाइव कॉल शामिल की। मुर्तज़ा क़िज़ल बाश नाम, बड़ा खूबसूरत नाम है, मुर्तज़ा क़िज़ल बाश, बड़ा खूबसूरत ट्रैक है, फ़राज़ तुम्हारी नज़र भी है। बार बार फरमाइश कर रहा है मुझसे एक लड़का, बार बार कह रहा है कि भाई आप एक पोइट्री प्लीज़ मुझे सुना दें, उदास हूँ मैं।
रहमान भाई पोइट्री सुना दो, गजल हो और सैड हो, आतिफ फ्रॉम मुल्तान। कोशिश करूंगा यार, अभी मन कहीं और उलझा हुआ। 1:30 पता नहीं, शायद इजाजत ले लूं, 3.5 घंटे हो गए बोलते हुए।

पता है। अब्दुलनूर हाशमी मेरे साथ हैं रिवाज गार्डन से। माय डियर रहमान भाई, आदाब। अपनी जात की मार्फत ज्ञान और इरफान सिर्फ मुशाहिदे से हासिल नहीं होता, अल्लाह वालों की सोहबत आपको ज्ञान की मंजिल पर पहुंचा देती है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साइमा हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसा क्यों है कि फर्स्ट टाइम मैंने आपको सुना है और ये कन्वर्सेशनल प्रोग्राम हमेशा मुझे याद रहेगा? क्या आप हमेशा ऐसे ही प्रोग्राम किया करते हैं? टाइम नहीं मिल रहा था, बहुत अरसे से अपने साथ इंटरप्ट किया जा रहा था, बहुत सारे मसाइल थे। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब अपने आप के साथ वक्त मिलता है तो फिर डिस्कशन शुरू होती है, बात शुरू होती है, तो फिर बहुत अलग तरीके से वो बहुत दूर तक जाती है। आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और इस आवाज़ से अगर कोई बात निकले तो वो दिल तक पहुंचनी ही चाहिए। रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। डॉक्टर राबिया मेरे साथ हैं, कह रही हैं कि ये शेर पढ़ दें जो आपने लगाया है और ये बता दें कि ये

ये भी बता दें कि ये शेर किसका है। उभरते हुए शायर हैं अब्दुल्ला जरीम, उनका शेर है ये, मैं राह गुजर हूं तेरी मंजिले मुराद नहीं। मैं राह गुजर हूं तेरी मंजिले मुराद नहीं, मैं राह गुजर हूं तेरी मंजिले मुराद नहीं। यहां ठहर के तसलसल खराब मत करना, बड़ा खूबसूरत शेर है। आपके मैसेजेस पढ़ रहा हूं मैं, आई एम रियली सॉरी, कॉल्स के मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज कॉल ले लें, प्लीज कॉल ले लें, फिर कभी इंशाल्लाह।

बस जल्दी से मैसेज पढ़ रहा हूँ, किसी का नाम रह जाए तो माजरत। अस्सलाम वालेकुम, आरजे रहमान वेलकम मरीना फ्रॉम लाहौर, थैंक यू वेरी मच। इस्लाम गुजर मेरे साथ। इस्लाम सर कैसे हैं आप? फिर पुरानी बात, आज भी मूड अच्छा है तो हसन कुजागर का पहला पार्ट सुना दें, मूड अच्छा हो तो मैं नहीं सुना सकता, इसके लिए मूड का ख़राब होना बहुत ज़रूरी है। नहीं मूड तो नेक्स्ट टाइम से, हाँ नेक्स्ट टाइम पर रख लेते हैं, थैंक यू वेरी मच इस्लाम। जुनैरा खान हमारे साथ हैं फ्रॉम लाहौर। खुदी का सफ़र बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है, मैं जब तन्हा होती हूँ तो खाली होती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना किसी से जिंदगी में गिला होता है, फिर भी खाली हूँ। खाली क्यों हूँ मैं? कितनी बड़ी बेहरमती कर रही हैं आप जुनैरा। लगता है हमें कि हम खाली हैं, ये ख्याल कहां से पैदा हुआ? दिमाग ने ख्याल बनाया कैसे? सोचें तो सही, अरे सोचें तो सही, ये कैसे हमारे अंदर ख्याल आया? तलाश करें कि दिमाग तक ये सिग्नल पहुंचा कैसे, अंदर क्या है जो टूट चुका है? सुनहरा तलाश करें, अधूरी बात कर रहा हूं लेकिन तलाश करेंगी तो आपको अच्छा लगेगा, दिल आपका मुतमइन होगा कि अच्छा मैंने खुद तलाश किया है, मैंने किसी की मदद नहीं ली। किंजा उस्मान हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। बहुत गहरी बातें करते हैं, हर बात आपकी सच है, हक है, थैंक यू वेरी मच किंजा। आपने अपने अच्छा आपने अपना आप पाया है क्या? मेरा एक हिस्सा यहाँ से कुछ हजार किलोमीटर के फासले पे है। पालूंगा तो सब कुछ पालूंगा, अपनी जात को किसी हद तक पहचानने की कोशिश जरूर की है मैंने किंजा। आयशा सुल्तान सर, इंसान खुद को पहचानता है, बखूबी पहचानता है, लेकिन ये जो हसासियत का पहलू है ना, ये बहुत तकलीफ़ देता है। इंसान कहीं ना कहीं खुद का सुराग पा लेता है, लेकिन जिस दिन इंसान खुद को अच्छी तरह पहचान गया उसी दिन उसे एहसास हो जाएगा कि ज़िंदगी का मकसद बस अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करना नहीं है। रद्द किए जाने से गुस्सा आता है, इसलिए कि इंसान उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है, अपनी वक़्त से जोड़ लेता है इनकार को। आयशा वेरी गुड, बहुत खूबसूरती से आपने डिस्क्राइब किया और सर कहा है आप। मेरा नाम रहमान है। किंजा हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच किंजा। शफाकत अली खान मायो, अस्सलाम वालेकुम। मियो नंबरदार लिसनर्स क्लब में शफकत अली मियो और मेरे साथ वालिद साहब शौकत अली मियो नंबरदार और चाचा जी मुश्ताक खान मियो नंबरदार और भाई मास्टर सलीम जावेद मियो नंबरदार। पीर महल चक नंबर 755 गाफ बे से कमाल प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान 101 की प्यारी टीम को सलाम पेश, थैंक यू वेरी मच। किंजा फिर से पूछ रही है, क्या आपने खुद को पाया है? यहां इसलिए बात कर रहा हूं, यहां इसलिए बोल पा रहा हूं, अपने आप के साथ वक्त गुजरता है और अच्छा लगता है, जानने का मौका मिलता है, अपनी जात को समझने का मौका मिलता। डॉक्टर साइमा कह रही हैं ये ट्रैक बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आवाज पे, थैंक यू वेरी मच। किंजा कह रही हैं एक बात से दूसरी बात निकाल लेते हैं, आप ये बताएं अपना आप है, खुद की आगे ही क्या है, खुद के आगे क्या है, खुद की आगे ही क्या, कुछ ऐसा ही लिखा है आपने, मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। बड़ी वैसे अजाब होती है ये आगे ही, जान लेने का जो नुकसान है ना या फिर तकलीफ है ना, ये जान लेने वाले बेहतर समझते हैं। उज़्मा एजाज अस्सलाम वालेकुम आरजे रहमान, थैंक यू वेरी मच। किंजा कह रही हैं हाँ लग रहा है आप उलझे, आपके पास अल्फाज बहुत हैं, हमारे पास नहीं अल्फाज, जरूरी नहीं है,
بعض اوقات خاموشی میں بہت سے الفاظ ہوتے ہیں. خاموشی خود ایک زبان ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے سب سے اجلی, معتبر, خوبصورت, احساسات سے بھری, احترام سے بھری, جذبات سے بھری زبان ہوتی خاموشی. عظمیٰ اعجاز کہہ رہی ہیں, بڑھ گئی شام جب اس راہ میں بیٹھے بیٹھے موج گرد نے پوچھا یہاں کیسے بیٹھے, ہر مسافر پہ ہمیں تمہارا گمان ہوتا ہے, ہر مسافر پہ ہمیں تیرا گمان ہوتا تھا, گرد کے ساتھ کئی بار ہیں اٹھے بیٹھے. اسے معلوم تھا یہ شام جدائی ہے سو ہم آخری بار بہت دیر اکٹھے بیٹھے. میں نے کیا کرنا ہے اس قیمتی گلدستے کو, دوست ہے وہ تو مصیبت میں سرہانے بیٹھے.

उसमें एजाज कह रही है, तुम मुझे पहले सा समझ कर वापस आए हो, मैं हूं अब भी वही पर अब वो पहले सा नहीं। तुमने जिस सफ़े तक पढ़कर शेल्फ में रख दी थी जो किताब, उसके बिल्कुल अगले वर्क पे मेरा वाक्या लिखा था। एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ और फिर आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, इसके बाद प्रोग्राम ख़त्म करने वाला हूँ। मुर्तज़ा गज़ल बाश का एक और ट्रैक शामिल करूँगा नया, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो ट्रैक है।

शाद यूसुफ मेरा प्यारा भाई, अवैस अली मेरे दोस्त आपको सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अवैस। मार्फत का मुकम्मल ताल्लुक दुनिया से है, क्योंकि इंसान की मार्फत होती है दुनिया के लिए, इंसान की मार्फत होती ही दुनिया के लिए। ठीक है, कोई बात बुरी लगी हो तो तिफ्ल मकतब समझ कर ये सोच करके अभी सीखने के अमल में हूं, दरगुजर कर दीजिएगा या फिर माफ कर दीजिएगा, बड़े लोग हैं आप। लेकिन अगर कोई एक बात किसी एक इंसान के लिए भी मशाल राह हो गई, यहां पे आने का, आपसे बात करने का, प्रोग्राम करने का मकसद पूरा हो जाता है, मैं आपसे मुलाकात करूंगा बुध की रात 12 से लेकर 2 बजे वाले प्रोग्राम में। अमूमन हमारी हफ्ते में 2 मुलाकातें होती हैं, अभी वेंसडे एंड थर्सडे, हर बुध और जुमेरात की रात 12 से लेकर 2 बजे तक। आज यहाँ इसलिए 10 मिनट पहले छोड़े जा रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि 10 बजे से प्रोग्राम चल रहा है।

नहीं यार, मुझे वो वाला ट्रैक दोबारा सुनने का दिल चाह रहा है यार। इसको इस पे ही इख्तिताम करते हैं, ठीक है ना? ये वाला ट्रैक इस पे इख्तिताम करते हैं। नहीं, मेरा उस पे ना ज़रा दिल मेरा रचा हुआ है, पता नहीं क्या है, जहन ज़रा उस तरफ रहा। आज फिर मैं इस मार्फत के टॉपिक को भी अधूरा छोड़े जा रहा हूँ। कभी दोबारा वापस आएंगे तो इसकी कुछ नई बातें समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये फिल्मबदी डिस्कशन होती है, कहाँ भी छोड़ता हूँ याद नहीं रहता, तो जहाँ से भी आऊँगा एक अलग अंदाज से आऊँगा। मैं जमीन से एक दिन आसमां को आऊँगा, मैं जमीन से एक दिन आसमां को आऊँगा, तुम पहले आसमां पे मेरा इंतजार करना। अल्लाह हम्युना सर।

बोलना आता ना था, खामोशी चिल्लाई बहुत, नाम क्या लेते चीख दुराही बहुत, क्या कहूँ हशर का पल कैसे गुजारा हमने, अपने माँ बाप को रो रो के पुकारा हमने, क्या कहूँ हशर का पल कैसे गुजारा हमने, अपने माँ बाप को रो रो के पुकारा हमने। गम तो ये है कि हुए राख कुछ ऐसे हम फूल, खालो खत भस्म हुए तन पे धुआं चेहरे पे धूल, तने नाजुक पे चुभे आग के शोलों के बबूल, और इस गम की कहानी को भला क्या दें तूल, कौन किस कब्र में है जान न पाएगा कोई, यूं चले है कौन किस कब्र में है जान न पाएगा कोई, यूं जले है हमें पहचान न पाएगा कोई, या नबी या नबी आपको सब कहते हैं मौलाए कुल, या नबी आपको सब कहते हैं मौलाए कुल, आपकी सालगिरह पर तो नहीं बनता था ये गुल, या नबी आपको सब कहते हैं मौलाए कुल, आपकी सालगिरह पर तो नहीं बनता था ये गुल, हम तो थे आपकी उम्मत के बहुत नन्हे भूल, बेजुबा बच्चों की सुन लीजिए ऐ खातिमे रसूल, सुए खुल्द आते हैं गोदी में छुपा लीजिए हमें, सोए खुल्द आते हैं छुपा लीजिए गोदी में हमें, हम हैं झुलसे हुए दामन की हवा, या नबी आपको सब कहते हैं मौलाए कुल, आपकी सालगिरह पर तो नहीं बनता था ये गुल, हम तो थे आपकी उम्मत के बहुत नन्हे भूल, बेजुबा बच्चों की सुन लीजिए खातिमे रसूल, सोए खुल्द आते हैं गोदी में छुपा लीजिए हमें, हम हैं झुलसे हुए दामन की हवा दीजिए हमें, हम हैं झुलसे हुए हम हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

एनीवे मुझे जाना है, वक्त हो चुका है मेरे जाने का। जाने से पहले आपका फीडबैक जल्दी से इंस्टाग्राम से शामिल करता हूँ, फिर आपसे इजाजत लेते हैं। अगर आप मुझे इंस्टा पे भी ज्वाइन करना चाहें तो कीजिए, अपना फीडबैक पहुँचाइए वहाँ से। बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ, मेरा नाम ज़ीशान नासिर है, एग्जैक्ट यूज़र आईडी है ZEESHANNASIR26 ZEESHANNASIR26। इंस्टा पे जाइए, यहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपके मैसेजेस अभी शामिल कर रहा हूँ प्रोग्राम में।

मुर्शिद में कुछ कर नहीं सका मगर चीखता रहा। मुर्शिद में कुछ कर नहीं सका मगर चीखता रहा। खामोश रह के जालिम का हामी नहीं बना। परवा रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं, एस्थेटिक हमें मैसेज कर रही हैं, इकरा हमारे साथ हैं, सारा हमारे साथ हैं, शहजादी हमें मैसेज कर रही हैं, खानसा इज देयर, लाइबा इज देयर, किरण खान हमारे साथ हैं, राबिया बतूल हैं, हिरा हुसैन हैं, एवरग्रीन हमारे साथ हैं, इसरा हमारे साथ हैं, अनम परवेज हमारे साथ हैं, खुदबख्त इजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, रबिया क्वीन हैं, गुलाब फ्रीन हैं, आयशा अबासी हमें मैसेज कर रही हैं, नादिया अहमद हमारे साथ हैं, शाजीना हमारे साथ हैं, मानी हमारे साथ हैं, बिनते हवा हमारे साथ हैं, मोहम्मद मुनीब हमारे साथ मौजूद हैं और खतीजा आरिफ हमारे साथ हैं, तूबा मलिक हमारे साथ हैं, मोहम्मद इकराम हमारे साथ मौजूद हैं, नूर फातिमा हमारे साथ हैं, मौसन जिशानियन हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, खानजादी हमारे साथ हैं, पाकिजा हमारे साथ हैं, सिमरन मलिक हमारे साथ हैं, हयात हमारे साथ हैं, हयात सुमर मैसेज कर रहे हैं, वकार गोंदल हैं, इकरा एंड राबिया हैं और एम टी एम की आवाज़ ये एक आई डी है, डॉल क्यूट हमारे साथ हैं, सैयदा बतूल हैं, जैनिफर हमारे साथ हैं और यमना हमारे साथ मौजूद हैं, रबिया क्वीन हमारे साथ हैं, हुरिया मलिक हमारे साथ हैं।

सीमा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते हुए बस एक लम्हा आपके जो शऊर है उसके ऊपर दस्तक देना चाहता हूं, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस दस्तक के बाद मैं देखूंगा कि दस्तक पहुंची आप तक के नहीं। सवाल करते हैं ना कि रोना कहाँ लिखा है। रोना यहाँ लिखा है कि इसानिया हुआ, डीएनए मैच किए जा रहे हैं कि किसी तरह कुछ दे दिया जाए कि माँ बाप दफन कर सके। हाय हाय हाय हाय हाय, खत्म हो गई है मेरी बात। बात समझ में आई है। आंख ने वजू नहीं किया, दिल ने हाय नहीं किया, बड़ा दुनियादार है वो बंदा। डीएनए मैच किया जा रहा है कि वालिद को वालदा को कुछ तो दे दे कि वो दफना सके। हाय हाय हाय अली असगर।

कुछ तो दे दें, बाप को सबर आ जाए, माँ को सबर आ जाए। अब पता चला है कि बाद अशूरा क्यों जनाबे अली असगर की माँ ठंडा पानी ना पीती रहीं, छांव में ना बैठती रहीं।

अली हैदर। खुश रहें, आबाद रहे, जिथा पैर होने उथा ही खैर होने। तुम लोगों का पूकी जा रहा है जिंदगी ने, सांसों ने, और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जीशान नासिर साइंस आउट, सेइंग अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।